0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ये लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार कर यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: मस्त मास्क पहना रहे तूने।
4: थैंक यू सर। ओ, जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
3: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
4: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
3: एक और एक
4: है ना सर।
3: देना,
4: बहुत मस्त लगे आपको। लेना सर।
3: भाई जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
4: समझ गया सर।
3: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
4: चल हम
3: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखें।
5: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
6: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात में अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
5: तुझे पूरा यकीन है?
6: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
7: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
5: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
8: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
7: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
9: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
10: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हाँ? वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ

14.91 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ। और अब से लेकर 11 बजे तक श्रोताओं रहूँगी आपके साथ, करूँगी ढेर सारी बातें, मनोरंजन के लिए प्यारे प्यारे गीत आपके साथ लेकर के आए हैं हम, और साथ ही साथ धर्मशाला और आसपास की जानकारियाँ भी आपके साथ साझा करेंगे। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले जानते हैं इस वक्त धर्मशाला का तापमान। 18 डिग्री सेल्सियस तापमान है श्रोताओं, और वातावरण में नमी है 92%। जी हाँ श्रोताओं, बारिशों का जो है दौर जारी है, और पिछले दो दिन से लगातार बारिश झमाझम बरस रही है। बारिश का मौसम है, मॉनसून भर भर के आए हैं, तो बारिश तो बरसेगी ही, लेकिन ये जो लगातार बारिश होती है ना श्रोताओं, ये कहीं ना कहीं हमारी जो पहाड़ी मिट्टी है उसके अंदर तक जाकर के पहाड़ियों को थोड़ा कमज़ोर कर देती है। और कई बार, या आपने भी देखा होगा कि रात को हम सोए ही होते हैं, जैसे कि पिछले साल की एक दो घटनाएं हुई थी, हम लोग सो रहे थे, अपने अपने घरों में सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे थे, लेकिन सुधेड़ में फ्लड आया था, एक पहाड़ी खिसक गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे घर जो हैं उनको नुकसान पहुँचा था। तो इस तरह से ये बात आपके साथ इसलिए साझा कर रहे हैं कि आपके भी घर अगर पहाड़ियों पे हैं और आसपास इस तरह का भूस्खलन का इलाका है, एरिया है, तो सचेत रहें और अनावश्यक यात्राएं जो है वो ना करें। श्रोताओं, बातचीत का मज़ा लेंगे, साथ ही साथ गीत भी आपको सुनाएंगे प्यारे प्यारे से। तो आइए कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं केदारनाथ फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं मेरे साथ गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में आपके साथ बातचीत भी करते हैं श्रोताओं, और गीत भी सुनाते हैं प्यारे प्यारे। और अब कार्यक्रम में समय है आपके साथ आज का विचार साझा करने का, तो आइए सुनते हैं क्या कहता है आज का विचार। तो जीवन में संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार और मीठी होगी।

विचार एक बार फिर से दोहरा रहे हैं श्रोताओं की जीवन में संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही शानदार और मीठी होगी। श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला आपके रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। बने रहिए यूं ही रेडियो गुंजन।

99.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं मेरे साथ गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और श्रोताओं को बता दें कि कल शाम ही हमारा जो ये सिस्टम है पूरा दोबारा से अपलोड हुआ है, और अगर इसको सुनने में आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा आवाज़ अप डाउन हो रही है, या जिस वक्त मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक ठीक से नहीं पहुँच रही या कम आ रही है, तो इसको ठीक होने में श्रोताओं को थोड़ा सा जो है वो समय लग सकता है। फिलहाल बता दें आपको कि आप हैं इस वक्त रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला मेरे साथ। श्रोताओं आज 8 अगस्त है, बहुत खास दिन, और आज के दिन एक बहुत ही हम कह सकते हैं अच्छा सा और प्यारा सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसकी शुरुआत हुई थी। ये आंदोलन 8 अगस्त को शुरू हुआ था 1942 में, और इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था और किस तरह से इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में जो है वो खत्म किया था, इसके बारे में हम कार्यक्रम में जब भी समय मिलेगा मुझे मैं आपसे बात करूंगी और विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल कार्यक्रम में आपसे कुछ ही देर बाद 9:20 पर आप सुनेंगे समाचार। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला यूं ही जारी रहेगा 9:30 पर भी। बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

विज्ञप्ति जारी कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बिलासपुर तथा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री चंबा में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल सोलन, कृषि मंत्री चंद्र कुमार कांगड़ा के धर्मशाला में समारोह में शामिल होंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान कुल्लू में, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर के रिकांगपियों में और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ऊना, नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश शर्मा सिरमौर के नाहन, आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा मंडी तथा विधायक सुंदर सिंह ठाकुर लाहौल स्पीति के चलांग में राष्ट्र ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। आयुष्मान भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की सेवा ने 25 करोड़ OPD पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विकास हो रहा है। ये देश में आभा समर्थित डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाती है। अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर OPD रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। ये सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। मंत्रालय ने बताया कि औसतन हर दिन लगभग 4 लाख मरीज OPD पंजीकरण के लिए स्कैन एंड रजिस्टर सेवा का इस्तेमाल करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ऊना नगर निगम क्षेत्र में निजी भूमि पर स्थापित प्रवासी श्रमिकों की झुग्गियों व अस्थायी बस्तियों में स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार जिन निजी भूमि मालिकों ने अपनी भूमि पर प्रवासी श्रमिकों अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए झुग्गियाँ स्थापित कर रखी हैं, उनके लिए ये सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि वहाँ पर्याप्त संख्या में शौचालय तथा स्वच्छता संबंधी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को लागू किए गए इस जन अभियान के दूसरे चरण को वर्ष 2021 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना और कचरा प्रबंधन को और अधिक उन्नत बनाना है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।

0: इन रोगियों को हटाने की कार्रवाई भी नियमानुसार की जाएगी। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश।
1: कुल्लू के पुलिस अधीक्षक अभिषेक सेकर ने कहा है कि जिले में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा तथा नशा तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के एंटी चिटा अभियान को जिला में पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि नशा तस्करी से जुड़ी किसी भी सूचना को निसंकोच पुलिस के साथ साझा करें। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला @handle@dayanews_शिमला और यूट्यूब चैनल दया शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंबा जिला के चुराहा विधानसभा क्षेत्र के बैरागढ़ में आज सुबह एक निजी बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस व अन्य बचाव दल मौके पर मौजूद हैं और राहत व बचाव कार्य जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस में करीब 7 लोग सवार थे। घायलों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल सीसा में भर्ती करवाया गया है। चुराहा के विधायक डॉक्टर हंसराज ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त की हैं। लाहौल क्षेत्र में आज से क्षेत्र के आराध्य देव झोलिंग बुडू बुहारी का 3 दिवसीय पावन जागरा श्रद्धा व पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ आयोजित किया जाएगा। जागरा के दौरान पारंपरिक देव अनुष्ठान संपन्न होंगे और श्रद्धालुओं को देव दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। समिति का कहना है कि ये आयोजन केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं बल्कि क्षेत्र की समृद्ध देव संस्कृति, सामाजिक एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह बना हुआ है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: लाहौल क्षेत्र में आस्था और देव संस्कृति का भव्य संगम एक बार फिर देखने को मिलेगा। 8, 9 और 10 अगस्त को क्षेत्र के आराध्य देव झोलिंग बुडू बुहारी का 3 दिवसीय पावन जाग श्रद्धा और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ आयोजित किया जाएगा। आयोजन समिति ने समस्त देवी देवता, श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों से परिवार सहित इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने की अपील की है। जागरण के दौरान पारंपरिक देव अनुष्ठान संपन्न होंगे और श्रद्धालुओं को देव दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। समिति का कहना है कि ये आयोजन केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं बल्कि क्षेत्र की समृद्ध देव संस्कृति, सामाजिक एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह बना हुआ है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था जो बंगाली पंचांग के अनुसार 22वें श्रावण के दिन पड़ता है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में लोग कवि, दार्शनिक, संगीतकार और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कोलकाता स्थित रविंद्रनाथ ठाकुर के पैतृक घर जोरासांको, ठाकुरबाड़ी और शांति निकेतन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें उनके जीवन और कार्यों पर कविता पाठ, संगीत और चर्चाएं शामिल हैं। गुरुदेव के गीत, कविताएं और रचनाएं बंगाली संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालती हैं और भारत की साहित्यिक विरासत का अभिन्न अंग बनी हुई हैं। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी व हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से खबर दी है। चिकित्सा महाविद्यालयों में शोध को देंगे बढ़ावा, डायग्नोस्टिक सेवाएं होंगी अत्याधुनिक। अमर उजाला की सुर्खी है, मेडिकल कॉलेजों में शोध के लिए अलग बनेगा विभाग, IGMC से शुरुआत। हिमाचल दस्तक लिखता है, इस बार हमीरपुर जिले के बड़सर में होगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। मानसून सत्र से जुड़ी खबर दिन हाथों ने सुर्खी दी है, मानसून सत्र के लिए अब तक पहुंचे 406 वर्ष। अमर उजाला की सुर्खी है, मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी, सुधीर व राणा पर FIR। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सुधीर के चुनावी हलफनामे व ITR तक खंगाले जा रहे हैं। मौसम पर दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारी बारिश से रुकी रफ्तार, 162 सड़कें अब भी बंद, किन्नौर कैलाश यात्रा भी रुकी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिमाचल में वर्षा, भूस्खलन ने बढ़ाई दिक्कतें, जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, मनाली में भारी बारिश और चट्टाने गिरने से एक की मौत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह हमीरपुर के बड़सर में होगा आयोजित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ऊना नगर निगम क्षेत्र में निजी भूमि पर स्थापित प्रवासी श्रमिक

की झुग्गियों में स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। देश आज राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर की 50वीं पुण्यतिथि पर उन्हें कर रहा याद। और चंबा के चुराहा क्षेत्र के बैरागढ़ में आज एक निजी बस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

शुद्ध 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला मेरे साथ। और श्रोताओं, समाचारों के बाद और छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। बातचीत करेंगे, जानकारियाँ भी साझा करेंगे, लेकिन मनोरंजन में जो है वो देरी नहीं होनी चाहिए। प्यारा सा गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं, 1942 और लव स्टोरी फिल्म से, बहुत ही प्यारा गीत। एंजॉय कीजिए अपने रेडियो सेट्स पर और बने रहिए यूं ही हमारे साथ 91.2 MHz पर।

श्रोता 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं मेरे साथ गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब श्रोताओं बात करते हैं आज के दिन की, आज यानी 8 अगस्त। और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। ये आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। ये आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 8 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरम्भ हुआ था। ये भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। श्रोताओं, भारत छोड़ो आंदोलन जिसका आरंभ हुआ था आज के दिन यानी 8 अगस्त 1942, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपके साथ बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आपके मनोरंजन के लिए प्यारे प्यारे गीत हैं श्रोताओं कार्यक्रम में। तो अब बात हो रही है श्रोताओं भारत की, भारत देश की, और हम गीत भी आपको सुनवा रहे हैं भारत देश से जुड़ा हुआ। एंजॉय कीजिए देशभक्ति का प्यारा सा गीत। बने रहिए यूं ही हमारे साथ 91.2 MHz पर।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज 8 अगस्त के बारे में। जी हां श्रोताओं, 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आज के दिन हुई थी। और क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का जो है वो फैसला लिया था। 8 अगस्त 1942 की शाम को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्यवाही के जरिए भारत इस आंदोलन को चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोधी गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मोदिनीपुर जैसे कई ज़िलों में स्वतंत्र सरकार प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेज़ों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज़्यादा समय जो है वो लगा। श्रोताओं, भारत छोड़ो आंदोलन की बात आज कार्यक्रम में हो रही है और आज ही के दिन यानी 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ था। और यही वो आंदोलन है श्रोताओं, जिसने कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पे मजबूर किया था। और कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद अंग्रेज़ जो है वो भारत छोड़ गए थे और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए भी केवल कुछ ही दिन बचे हैं। 15 अगस्त आने में भी थोड़ा सा ही समय है श्रोताओं। और उससे पहले किस तरह से भारत को आज़ाद करने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने और सभी लोगों ने जो है वो जी तोड़ मेहनत की थी, उसके बारे में आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में और भी विस्तार से बात करेंगे श्रोताओं, फ़िलहाल कार्यक्रम में समय हो रहा है आपको एक और प्यारा सा गीत सुनाने का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोतो, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओ, आज है 8 अगस्त और आज के दिन हम बात कर रहे हैं आज ही के दिन के बारे में। जी हाँ श्रोताओ, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी सन 1942 में, और महात्मा गांधी के प्रयासों से भारत छोड़ो आंदोलन ने जो है वो जोर पकड़ा था। और कहीं ना कहीं श्रोताओं, ये वही आंदोलन है जिसने वाकई में अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर जो है वो मजबूर किया था। इसी आंदोलन और हमारे क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बदौलत जो है वो देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त आने में भी श्रोताओं केवल एक ही हफ्ता बाकी है, उसके बाद आज़ादी का जश्न भी हम मनाएंगे। और आज हम मना रहे हैं आज के दिन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का भी एक यादगार दिन था, उसके बारे में हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं श्रोताओं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। बात हो रही है श्रोताओं अपने देश भारत की आज़ादी की और भारत की, तो आइए सुनते हैं ऐसा देश है मेरा इस प्यारे से देशभक्ति गीत को। इंजॉय कीजिए श्रोताओं ये प्यारा सा ट्रैक रेडियो।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्स पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में अब जानते हैं क्या कुछ खास घटा था आज के दिन इतिहास में। श्रोताओ 8 अगस्त 1940 ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ऐतिहासिक अगस्त प्रस्ताव पेश किया। अगस्त 1942 बॉम्बे के गवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था। 8 अगस्त 1967 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की बैंकॉक में स्थापना हुई थी। 8 अगस्त 1974 वाटरगेट कांड के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। 8 अगस्त 1988 म्यांमार में लोकतंत्र के समर्थन में ऐतिहासिक जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त 1915 प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और लेखक भीष्म साहनी का जन्म हुआ जो अपने उपन्यास तमस के लिए जाने जाते हैं। 8 अगस्त 1915 ये थी कुछ खास घटनाएं जो आज के दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब चलते हैं श्रोताओं कार्यक्रम में आगे, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोता 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब रुख करते हैं जानकारियों की। और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में एक समर्पित शोध विभाग स्थापित किया जाएगा, जिसे बाद में राज्य के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में भी लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य संसाधनों में डायग्नोस्टिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि मरीजों को समय पर और सटीक जांच सुविधा मिलने से उनका शीघ्र उपचार सुनिश्चित हो सके। उन्होंने मरीजों के लिए MRI, CT स्कैन, एक्सरे जैसी जांच बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। श्रोताओं, ये थी जानकारी। 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत। एंजॉय कीजिए ट्रैक और बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और श्रोताओ आज है 8 अगस्त। आज के दिन हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। जी हाँ श्रोताओ, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जो यूसुफ मेहर अली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेताओं में से एक थे। विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह से उलझता देख जैसे ही नेताजी आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया, गांधी जी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात में ही बंबई से अंग्रेजों को भारत छोड़ो और भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया और सरकारी सुरक्षा में यरवदा पुणे स्थित आगा खान पैलेस में चले गए। उसके बाद आंदोलन को लाल बहादुर शास्त्री सरीखे एक छोटे से व्यक्ति ने प्रचंड रूप दे दिया। शास्त्री जी कुछ समय बाद गिरफ्तार हुए और ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने का उद्देश्य से बिस्मिल ने नेतृत्व में संघ के 10 जुझारू कार्यकर्ताओं ने काकोरी कांड किया, जिसकी यादगार को ताजा रखने के लिए पूरे देश में हर साल काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाने की परंपरा भगत सिंह ने प्रारंभ कर दी। इस दिन बहुत बड़ी संख्या में नौजवान एकत्रित होते थे। गांधी जी एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने 8 अगस्त 1942 का दिन चुना। श्रोताओ, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं और कार्यक्रम में आगे और भी बात करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे अब कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप ही इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में बात हो रही है श्रोताओं भारत छोड़ो आंदोलन, हमारे देशभक्ति की, और देशभक्ति से ओतप्रोत गीत भी आपको समय समय पर सुनवाए जा रहे हैं कार्यक्रम में। एंजॉय कीजिए श्रोताओं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत रोजा फिल्म से।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम है और हम समय समय पर आपको चेतावनी भी देते रहते हैं और आपसे गुजारिश भी करते हैं कि बरसात के मौसम में सावधानी पूर्वक चलिए, अपनी यात्राओं को जितना हो सकता है आप स्थगित कीजिए, टाल दीजिए और जब मौसम सही होगा उस वक्त यात्राएँ कीजिए। लेकिन बावजूद उसके फिर भी कई बार हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी काम होते हैं, जाना पड़ता है, तो मौसम विभाग की जो जानकारियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे समय पर निकलें जब मौसम जो है वो ठीक ठाक रहे। और 2 दिन से धर्मशाला या यूं कहें कि हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है और ना सिर्फ हिमाचल में बल्कि दिल्ली तक ये जो है बारिशें हैं ये हो रही हैं। और कल ही किसी से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि दिल्ली में इतना बुरा हाल है कि कंटिन्यू बारिश हो रही है और सड़कें जो है पूरी तरह से भर गई हैं और स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियां कर दी गई हैं और इवन ऑफिसेज में भी लोगों को ये कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए अगले जितने भी घंटों तक बारिश की जो है वो संभावना जताई गई है दिल्ली में। तो एक तरह से हम जो हैं हिमाचलवासी कहें या पहाड़ों पर रहने वाले लोग खुशकिस्मत भी हैं कि बारिश अगर होती है तो कहीं पे उसका पानी जो है वो जमा नहीं होता है और पानी अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बना ही लेता है दोस्तों। इसलिए जब भी कभी हम लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, नदी नालों के ऊपर हमने पुल डंगे या उसको कवर किया है, तो नेचर है, नेचर तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। और आपने भी देखा होगा बीते कुछ सालों में कि जहाँ पर भी हम लोगों ने अतिक्रमण किया है वहाँ पर कुदरत जब अपना रूप दिखाती है तो वो सारा कुछ फिर तबाह कर ही देती है। तो हमें समझदारी के साथ ये निर्माण कार्य भी करने हैं और अपनी यात्राओं को भी समझदारी के साथ ही चलाना और रोकना है। और श्रोताओं, इसके साथ ही बातचीत थोड़ी सी लंबी हो जाएगी मुझे लग रहा है। एक और बात हम बात बात में डिस्कस कर रहे थे कि कांगड़ा के कुछ एक इलाके आप भी जानते हैं, नगरोटा, शायद नगरोटा की साइड कुछ गाँव हैं जहाँ पर आजकल खूब चोरियाँ हो रही हैं। और पहले हम जानते हैं कि लोग जो हैं जब भी चोर चोरियां करते थे तो घर का जो सामान होता था, फ्रिज या कलर टीवी, इस तरह की चोरियां होती थी। लेकिन आजकल के चोर जो हैं वो बड़े स्मार्ट हो गए हैं। एक तो डिजिटली वो हमारा जो बैंक अकाउंट है उसको साफ़ कर देते हैं, उसके बावजूद जो थोड़े कम मुझे ऐसे लगता है कि कम एजुकेटेड चोर हैं वो बहुत स्मार्टली चोरियाँ करते हैं और घरों में जा कर के सिर्फ गोल्ड और सिल्वर या अगर कैश है तो उसको वो चुरा रहे हैं। और इनका रेकी करने का तरीका या पता नहीं किस तरह से ये ट्रेंड होते हैं कि इन्हें पता लग जाता है कि कौन से घर में कब लोग नहीं होंगे और किस समय लोग नहीं होंगे, उसी समय ये जा कर के चोरी करते हैं। तो अपना जितना भी कीमती सामान है उसको आप लॉकर में रखिए और

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। एक और जानकारी आपके लिए, हिमाचल के आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सरकार के मजबूत निर्णयों के समर्थन में लंच में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अगुवाई में धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया। ये रैली लंच से रेस्ट हाउस तक निकलती गई। इस अवसर पर उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचली हितों की रक्षा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। उनकी नीतियों और मजबूत निर्णयों के लिए के कारण हिमाचल अपने हकों के लिए मजबूती से आवाज़ उठा पाया है। यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता देखकर विरोधी भी बौखला गए हैं। श्रोताओं ये थी जानकारी। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं सावन का महीना है और सावन के महीने में जो है श्रद्धा भाव हमारा और भी जाग जाता है। सावन के सोमवार के दिन खासकर शिव भोलेनाथ की पूजा होती है और हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं वो व्रत करती हैं, उपवास करती हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हैं। तो ये जो सावन है ये अपने साथ बहुत से जो है त्यौहार वो भी लेकर के आता है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी लेकर के आता है। और वाकई में अगर आप भी विश्वास करते हैं और श्रद्धा विश्वास है आपके मन में, तो आप भी इस सावन के महीने को जो है अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपनी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी कीजिए। जो भी घर के समीप भोलेनाथ का मंदिर है वहां ज़रूर जाइए। और कहते हैं भोलेनाथ जो है वो सबसे भोले हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। एक सिंपल साधारण पानी का लोटा लेकर के आप अपने घर से जल ले जाएं और जल अर्पित करें, उसी में भगवान भोलेनाथ जो है वो खुश हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना को वो सच्चे मन से की गई जो आपकी प्रार्थनाएं हैं उनको सुनते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो श्रोताओं आप सभी के लिए हमारी दिल से यही गुजारिश है कि भगवान भोलेनाथ इस सावन के महीने में आप पर मेहरबान हों, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो ज़रूर पूरा करें। आप बने हुए हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोता 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। आज ही के दिन 1942 को ये आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। श्रोताओं, युद्ध के बाद 1942 में क्रिस्प द्वारा डोमिनियन स्टेटस की पेशकश के बारे में गांधी का कथन एक असफल बैंक पर लिखा गया पोस्ट डेटेड चेक है, जिसे अक्सर दिखाया जाता है, लेकिन लोग गांधी के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के मूल मसौदे से अवगत नहीं है, जो वास्तव में इसके पीछे का कारण बताता है। यानी गांधी जी का मानना था कि जर्मनी और जापान अंततः द्वितीय विश्व युद्ध जीतेंगे। गांधी जी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सहारा तभी लिया जब उन्हें लगा कि ब्रिटेन हार सकता है और जापान और जर्मनी जीत सकते थे। उस समय जर्मनी और इटली की धुरी शक्तियां अधिकांश यूरोप पर नियंत्रण कर रही थी, उत्तरी अफ्रीका में पैठ बना रही थी और सोवियत संघ के प्रमुख शहरों को घेरने की प्रक्रिया में थी। सिंगापुर और बाद में वर्मा में ब्रिटिश साम्राज्य के गढ़ों को अचानक पतन के बाद मोहन सिंह की भारतीय राष्ट्रीय सेना के साथ जापानी सेना वर्मा के माध्यम से भारत के दरवाजे तक दस्तक दे रही थी। 5 अगस्त 1942 को इंडियन एक्सप्रेस में यही रिपोर्ट छपी थी। नेहरू ने कहा कि ब्रिटिश के जाने के बाद गांधी की योजना के अनुसार भारत संभवतः जापान के साथ बातचीत करेगा और उसे भारत में नागरिक नियंत्रण, सैन्य ठिकानों और विदेशी सैनिकों के लिए मार्ग के अधिकार की अनुमति भी देगा। महात्मा गांधी के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का मूल मसौदा, जो उनकी अपनी हस्तलिपि में लिखा गया था और कई कागजात 26 मई 1942 को ब्रिटिश राज पुलिस द्वारा जब्त कर लिए गए थे, जब उन्हें AICC की बैठक के बाद AICC कार्यालय पर छापा मारा था, ब्रिटिश राज ने गांधी के मसौदे और कई कागजात, जिनमें AICC के मिनट भी शामिल थे, को तब सार्वजनिक किया गया था जब AICC 4 अगस्त 1942 को बॉम्बे में बैठक कर रही थी। युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल ने गांधी की योजना के बारे में भी चर्चा की कि ब्रिटेन को बाहर निकालकर भारत को जापानी साम्राज्य का उपनिवेशक बनाया जाए। श्रोताओं, भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है कार्यक्रम में और ये बात जारी रहेगी। फिलहाल कार्यक्रम में लिए चलते हैं आपको संगीत की और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, जहाँ अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फासले को हटाने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। ये सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्षों में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड वाबिल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन भी किया। और श्रोताओं, 8 अगस्त को शुरू हुए इस आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुए इस आंदोलन में देश के हर एक हिंदुस्तानी, हम कह सकते हैं आम हिंदुस्तानी जो है वो शामिल हुआ था। और इसी आंदोलन की वजह से हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ। और अब आने वाले कुछ ही दिनों में यानी 15 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न भी मनाएंगे। 1942 से लेकर 1947 तक का जो सफ़र था, काफ़ी जद्दोजहद और काफ़ी सारी मेहनत हमारे देशभक्तों की और क्रांतिकारियों की उसमें लगी, लेकिन अंततः हमारा देश आज़ाद हुआ। और उन्हीं क्रांतिकारियों के बलिदानों की वजह से आज हम आज़ाद देश में सांस लेते हैं और आज़ाद भारत के नागरिक कहलाते हैं। उन सभी क्रांतिकारियों को, देशवासियों को हमारा शत शत नमन।

0: तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल।
1: श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हमने बात की भारत छोड़ो आंदोलन की। जी हां श्रोताओं, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी जी की अगुवाई में शुरू हुआ था और आम जनमानस ने बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में जो है वो भाग लिया था और इसी आंदोलन के चलते देश आज़ाद भी हुआ था। श्रोताओं, आज हम आज़ाद भारत देश में जो है वो सांस ले रहे हैं और एक बार फिर से देश के उन सभी क्रांतिकारियों को, उन सभी देशभक्तों को हम विनम्र श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनका शत शत नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से हम लोग जो है वो स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपके साथ इतनी ही बातचीत करेंगे हम और अब आपसे विदा लेने का समय भी हो रहा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में चलते चलते आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अंतिम गीत इसी वादे के साथ कि आप से बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ये लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना रहे तूने।
5: थैंक यू सर। ओ, जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर।
4: देना,
5: बहुत मस्त लगे आपको।
4: लेना
5: सर। सर सर सर,
4: ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: चल हम
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखें।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात में अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
6: तुझे पूरा यकीन है?
7: चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
8: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
6: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
9: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
10: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
11: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
12: सही है यार।
11: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
12: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और इसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
11: तुम इतने पैसों को क्या करोगे?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ये लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना रहे तूने।
5: थैंक यू सर। ओ, जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड
5: है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर?
4: देना।
5: बहुत मस्त लगे आपको।
4: लेना
5: सर। सर सर सर।
4: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: सलाम।
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
6: तुझे पूरा यकीन है?
7: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
8: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
6: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
9: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
8: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
10: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
11: सही है यार।
10: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
11: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
10: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?

0: कोरोना में एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और इस बदलते मौसम के साथ अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। उसी तरह से हम भी आप सभी का ध्यान रखते हुए हर हफ्ते आप सभी के लिए बहुत ही खास जानकारियां लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हर हफ्ते आप सभी कार्यक्रम सुनते हैं मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो यही प्रयास हमारा भी रहता है और इसी प्रयास की कोशिश में हम आप सभी के साथ जुड़ते हैं जानकारियों के साथ, बहुत ही खास जानकारियों के साथ। तो सबसे खास बात कि ये कार्यक्रम आप सभी सुनते हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ते हैं हर हफ्ते इस खास जानकारी को आप सभी तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, आइए अपने खास मेहमान मनोवैज्ञानिक प्रियशी जी का स्वागत करते हैं हमारी इस खास बातचीत में।
1: थैंक यू रुचिका
0: जी। तो मैम, कैसे हैं आप?
1: हम बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया। आपके साथ जुड़कर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, एक अलग ही उत्साह चेहरे पे रौनक जो है देखने को मिल जाती है जी। तो अब हम हर हफ्ते हम अपने दोस्तों के लिए बहुत ही खास बातचीत लेकर आते हैं ताकि हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो अपने आप को अपनी जो है शारीरिक प्रॉब्लम हो चाहे मानसिक हो, कोई भी हो, उससे अवेयर हो सके और वो जान सके कि आखिर हमारी जो ये आसपास की जिंदगी है उससे हटकर थोड़ा सा अपना आप भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसी से रिलेटेड जो है हम लोगों को जागरूक करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके लिए ये जानकारियां महत्वपूर्ण रहती हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस खास बातचीत का। तो मैम, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि जो हमारी नींद है तो वो किस तरह से हमारे लिए हमारी जिंदगी में जरूरी रहती है, क्योंकि ये जो समय है आज का समय बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है सभी का, तो ऐसे में हम अक्सर हर चीज की एक रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम नींद को अवॉइड कर देते हैं। तो उसके बारे में हमने अपने दोस्तों से बहुत ही खास बातचीत की थी। तो थोड़ा सा एक हम छोटा सा रिकैप करना चाहेंगे आपके माध्यम से।
1: जी बिल्कुल रुचिका। देखिए, नींद आज के समय पर एक लग्जरी बनता जा रहा है जबकि ये एक नेसेसिटी है। तो जब तक इंसान इस बात को अपने जीवन में नहीं उतार लेते तब तक नींद से जुड़ी समस्याएं उनके जीवन में बनी रहेंगी। नींद सिर्फ परेशानी होने के बाद सिर्फ नींद की परेशानी नहीं रह जाती, क्योंकि ये आने वाली कई बीमारियों को न्योता देती है
0: जी।
1: ये अपने आप में तनाव से तो जुड़ी है ही, लेकिन अगर नींद में परेशानियां आती हैं तो उसके साथ साथ और भी कई परेशानियां आती हैं, मानसिक स्तर पर भी और शारीरिक स्तर पर भी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी स्लीप हाइजीन मेंटेन करी जाए, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में बात करी
0: जी। बिल्कुल जी जी। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना कि स्लीपिंग का पैटर्न आप सभी वैसे जान चुके हैं कि किस तरह से जो है हमारा ये साइकिल रहता है, क्योंकि पहले तो हम ये नॉर्मली जानते थे कि बस सोना है और उठ जाना है, बस सोना है उठ जाना है ना। और लेकिन जब आपसे बात की और आपने जिस तरह से एक्सप्लेन करके हमारे दोस्तों को बताया कि ये एक पैटर्न होता है जो कि एक साइकिल की तरह रिपीट होता है और पूरा ये स्लीपिंग पैटर्न हमें पूरा करना होता है,
1: राइट।
0: और उसी कड़ी में हमने बात की थी कि हम बात करेंगे स्लीपिंग डिसऑर्डर की
1: जी।
0: तो दोस्तों, आज की हमारी ये खास बातचीत स्लीपिंग डिसऑर्डर की रहने वाली है। आप सभी जानने वाले हैं कि आखिर स्लीपिंग तो हमने जान ली, लेकिन ये डिसऑर्डर जो इसके साथ जुड़ गया है शब्द, इसका क्या अर्थ है, इससे हमें क्या जानने के लिए मिल सकता है और इससे हम कैसे जो है खुद को दूर रख सकते हैं। तो मैम, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये स्लीपिंग डिसऑर्डर है क्या और ये स्लीपिंग डिसऑर्डर क्या है
1: जी। रुचिका, देखिये, डिसऑर्डर शब्द का मतलब है कि कोई चीज जो अपने नेचुरल ऑर्डर से ऑफ बैलेंस हो चुकी है उसको डिसऑर्डर कहेंगे। जब हम लोग मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि नॉर्मली आम तौर पे जो चीजें होती हैं, अगर वो बिहेवियर्स या वो फिजिकल साइंस की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन या फ्रीक्वेंसी आम से ज्यादा या आम से कम हो जाए तो वो बहुत ही चिंताजनक बात होती है। इसके अलावा उसका इम्पैक्ट हमारे निजी जीवन में या हमारे ऑक्यूपेशनल यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में या फिर हमारे रिलेशनशिप्स में पड़ने लग जाए तो वो भी बहुत गंभीर बात होती है। और तीसरा कि स्ट्रेस की वजह से हमारा ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है उस पर इम्पैक्ट आने लग जाए और आप इन परेशानियों को जितना भी रिजॉल्व करने की कोशिश करें वो सॉल्व ना हो पाए। आप अपने दोस्तों से बात करें पर वो प्रॉब्लम फिर से रिपीट होने लगे, आप ओवरथिंक करके उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करें और वो ओवरथिंकिंग कभी खत्म ही ना हो
0: जी।
1: तो जब इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं व्यक्ति को तब ये बताया जाता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रीच आउट करे, क्योंकि ये अपने आप में एक डिसऑर्डर का साइन होता है। सो इससे पहले बहुत देर हो जाए ये बहुत जरूरी होता है, जैसे हम जानते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसलिए अगर आपको इन तीन चार चीजों में से कोई भी एक पॉइंट भी लगे कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर का रूप ले रहा है, तो उसको आप बचा सकते हैं।
0: जी,
1: नाउ कमिंग टू स्लीपिंग डिसऑर्डर। देखिए, स्लीप के बारे में हम लोगों ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करी थी पिछले प्रोग्राम में।
0: जी,
1: जैसे कि स्लीप वेक साइकिल होती है और ये साइकिल हर 90 मिनट्स में रिपीट होती है। इस साइकिल के 4 डिफरेंट फेजेस होते हैं, NREM एंड REM। नाउ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्लीपिंग डिसऑर्डर में या तो आपकी जो फेजेस हैं, ये जो 4 फेजेस हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाए, या फिर जो आपकी क्वांटिटी ऑफ स्लीप है या क्वालिटी ऑफ स्लीप है, उसमें डिफरेंसेस आने शुरू हो जाए। तो जब आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप या क्वांटिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब होने लग जाए, तब समझ जाइए कि वो स्लीपिंग डिसऑर्डर है।
0: तो मैम, सबसे पहले अभी आपने ये कहा है कि क्वांटिटी और क्वालिटी में, तो इसे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ स्लीपिंग या क्वालिटी ऑफ स्लीपिंग? तो हमारे दोस्तों को ये भी जानना जरूरी है कि ये किस तरह से हमें फेस करना पड़ता है या किस तरह से इसका प्रोसेस रहता है।
1: देखिए, यहाँ पे दो चीजें, या तो हम प्रिवेंटिव मेजर की बात कर रहे हैं या फिर हम

0: ये समझें कि ये समस्या आ कहाँ से रही है, राइट। तो पहले समझते हैं कि समस्या आ कहाँ से रही है, जिससे कि प्रिवेंटिव हमें अपने आप पता चल जाएगा कि क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए
1: जी।
0: इसकी जो समस्या शुरू होती है वो कुछ यूं कि जो स्ट्रेस रहता है उसकी वजह से इंसान एक ओवर थिंकिंग के फेज में चला जाता है। आप अक्सर देखेंगे कि जो रात का टाइम होता है, रात के समय पे लोगों के इमोशंस बहुत हाई होते हैं। तो एक तो जो हमारा माइंड है, माइंड भी तीन तरह के माइंड है हमारे, लॉजिकल माइंड, इमोशनल माइंड एंड वाइज माइंड। तो रात के समय पे हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से अपना रोल प्ले करते हैं कि हमारा इमोशनल माइंड ज्यादा डोमिनेंट रहता है, जिसके कारणवश इंसान की डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होती है और थॉट प्रोसेस भी, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग के कारण वो एक लूप में चला जाता है और ऐसे करके वो अपनी स्लीप को डिले करता जाता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, दिस इज वन ऑफ द कॉजेज जहाँ से स्लीप डिसऑर्डर्स शुरू होते हैं, क्योंकि स्लीप के लिए जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसके लिए पीस होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने ब्रेन वेव्स के बारे में भी बात की थी, तो यानी कि जब तक व्यक्ति रिलैक्स स्टेट में ही नहीं है, यानी कि ब्रेन में अल्फा वेव ही नहीं है, तब तक इंसान थीटा वेव तक कैसे पहुंच
1: पाएगा, बिल्कुल,
0: यानी कि वो नींद में नहीं जा पाएगा। तो इसलिए व्यक्ति का रिलैक्स होना, पीस में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर तनाव है और अगर ओवर थिंकिंग है तो ये प्रॉब्लम जन्म लेगी ही लेगी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आज के समय पे कई लोगों का जो डे शिफ्ट की जगह नाइट शिफ्ट का काम चलता है, जिसकी वजह से उनको अपनी स्लीप को डिले करना पड़ता है, तो वहां से भी प्रॉब्लम जन्म लेती है, क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट इन सिंक विथ नेचुरल साइकिल। तो हमारी जो सर्कैडियन रिदम है वो हमारे जो नेचर की एक डे टाइम साइकिल है, डे और नाइट की जो साइकिल है, जैसे सनराइज होता है, सनसेट होता है, उससे हमारे ब्रेन के केमिकल्स डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। तो अगर हम दिन को सो के रात को जग रहे हैं काम की वजह से किसी भी कारणवश, तो ये स्वाभाविक है कि हमारे जो ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री है उस पे फर्क पड़ेगा, विच विल लीड टू फिजियोसाइकोलॉजिकल इश्यूज।
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप सभी ने जाना कि किस तरह से स्लीपिंग डिसऑर्डर की शुरुआत होती है, कौन कौन से ऐसे कॉजेज रहते हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो यही बात आ गई कि जब तक हमारा माइंड शांत नहीं होगा तब तक हम इस स्टेज पे जा ही नहीं सकते हैं, यानी कि स्लीपिंग में जा ही नहीं सकते। जब हम बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं तो उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो फिलहाल एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस खास बातचीत के साथ। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: दोस्तों इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ
0: जी। तो बहुत ही प्यारी सी आवाज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं, तो आइए दोस्तों इसी आवाज के साथ आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर, आप सभी के मन की ओर। हमारे बहुत सारे प्रयास हैं लेकिन एक तो सबके लिए आम बात है, तो फिलहाल इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और आज के इस बहुत ही खास बातचीत में दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर की। तो मैम ने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरह से एक जो हमारा स्लीपिंग वेक साइकिल है वो प्रोसेस करता है, किस तरह से हमें उसे पूरा करना होता है, किस तरह से हमें अपनी स्लीपिंग के लिए अवेयर होना होता है। लेकिन अभी मैम ने बात की थी कि क्वांटिटी और क्वालिटी, तो हम बात करते हैं क्वांटिटी की कि किस तरह से क्वांटिटी जो है हमारी स्लीपिंग को मतलब कि स्लीपिंग डिसऑर्डर कहें या स्लीपिंग को इम्पैक्ट करती है, किस तरह से ये हमारे इसमें प्रोसेस में आती है।
1: देखिए क्वांटिटी का मतलब है यहाँ पर ड्यूरेशन से। तो अगर कोई व्यक्ति है जिनका स्लीप का ड्यूरेशन कम या ज्यादा है
0: जी,
1: तो उसको स्लीप डिसऑर्डर बोलेंगे। और ये ध्यान रखना है कि ये जो एक एक्सपीरियंस है ऑफ लो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप या हाई ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, ये तकरीबन 3 से 4 हफ्ते तक रहता है यदि परसिस्टेंटली, तो वो डिसऑर्डर का फुल ब्लोन एक रूप ले लेता है। अब देखे जो व्यक्ति जिनको नींद कम आती है या फिर बोले उनको नींद में जाने में प्रॉब्लम आती है या फिर ऐसा कहें कि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो उनका जो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप है अगर वो 3 से 4 घंटे है कम है, कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमसे 2 घंटे ही ढंग से नींद आई है, तो ऐसे लोगों का ये जो डिसऑर्डर होता है इसको बोलते हैं इंसोम्निया, यानी कि कम स्लीप, कम नींद आती है। और दूसरा होता है हमारा हाइपरसोम्निया जिसमें ज्यादा नींद आती है, तो इसमें एक्सेसिव स्लीप की डिमांड करती है बॉडी और माइंड, एंड व्यक्ति 10 से 12 घंटे सोने के बाद भी थका हुआ महसूस करता है, वो फ्रेश महसूस नहीं करता, इसीलिए इसको डिसऑर्डर का नाम दिया गया, क्योंकि इतना क्वांटिटी ऑफ स्लीप लेने के बाद भी व्यक्ति को वो महसूस नहीं हो रहा, वो फ्रेशनेस या रिजुविनेशन महसूस नहीं हो रही है जो उसको एक्सपीरियंस होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो उसे हम इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया का मतलब कि डिसऑर्डर का नाम दे देते हैं।
1: राइट।
0: तो जैसे कि अभी आपने मैम कहा कि 3 से 4 घंटे मैक्सिमम या मिनिमम है ना किसी को भी, तो कुछ जैसे वैसे तो नेचुरली हमें नींद आती है जब स्टार्टिंग में हम इस प्रोसेस में जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम डिफरेंट थिंग्स जैसे हम वर्किंग में आ जाते हैं, चाहे स्टडी का थोड़ा सा स्ट्रेस हो या फिर ऑफिस का स्ट्रेस हो या किसी भी तरह का, और वो बहुत सारी बातें जब हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, तो शायद उसकी वजह से भी हमें ऐसा लगता है कि हम सो गए, कोशिश भी करते हैं, हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं सोने की, लेकिन फिर भी वो मतलब बातें घूम फिर के हमारे दिमाग में चलती रहती है और उसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। और जब वो सुबह का टाइम होता है जैसे 3-4 बजे के आसपास का, जैसे आपने कहा कि सिर्फ सुबह थोड़े टाइम के लिए हमें नींद मतलब मुश्किल से 2 घंटों की नींद हम पूरी कर पाते हैं अच्छे से, तो शायद वो यही टाइम रहता है खासकर जिन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है शायद, तो उसे हम एक रूटीन में लाने के लिए कोशिश करते हैं फिर भी नहीं हो पाता, तो उसे हम कैसे मतलब कि एक उसमें सर्कल में ला सकते हैं।
1: देखिए रुचिका, इसमें अगेन स्लीप हाइजीन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी
0: जी।
1: देखिए रात को समय पर नींद आ सके ये एक हैबिट है, तो हैबिट को बिल्ड करना पड़ता है। तो हैबिट को आप बिल्ड कैसे करेंगे, लगातार सेम समय सेम टाइम पर बेड पे जाने का प्रयास करें, एक ही समय पर सेम टाइम पर डेली अपने फोन का यूज करना छोड़ दें, सेम टाइम पर खाना खाएं, कहते ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो बेसिकली आपको अपना एक रात का रूटीन बनाना पड़ेगा। रात को अच्छे से नींद आ सके इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका शरीर थका हुआ महसूस करे
0: जी,
1: क्योंकि जब शरीर थका हुआ होगा तभी वो रिलैक्सेशन की डिमांड करेगा, उसको रिलैक्सेशन की जरूरत लगेगी
0: जी।
1: और इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक व्यक्ति डे टाइम में अपने रूटीन में क्या क्या कर रहा है। आप ऐसे देखेंगे तो आमतौर पे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जिम जाते हैं या फिर जो वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लोग सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, अपना काम करते हैं, घर जाते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, फिर सोने का प्रयास करते हैं, सो नहीं पाते हैं और लैपटॉप चलता रहता
0: जी।
1: तो बेसिकली ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डे टाइम पर अपनी सारी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करें। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि लोग अक्सर शाम को, कई लोग नॉट अक्सर बट कई लोगों को हमने देखा है जो शाम को या रात को जाते हैं जिम करने।
0: बिल्कुल,
1: जो कि इट्स अ बिग नो, क्योंकि जब आप जिम करने जा रहे हैं तो अल्टीमेटली आप अपनी बॉडी को और एक्टिव कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप थक जाओगे तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी।
0: लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना रहता है
1: राइट
0: कि शाम के समय जब हम जिम पे जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी थकान महसूस होगी और शायद हमें नींद आ जाएगी।
1: लेकिन ये सच नहीं है। देखिए होता क्या है कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं जिम में जाके, तो अल्टीमेटली जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपके इंटरनल स्ट्रेस को रिलीज कर रहे हैं। वो अपने मसल्स में सिर्फ टेंशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके इंटरनल स्ट्रेस को भी रिलीज कर रहे हैं, यानी कि आपका कॉर्टिसोल कम कर रहे हैं, आपके अंदर एंडोर्फिन्स और अच्छे हार्मोन्स को बढ़ा रहे हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट वुड बी द रियलिटी विल बी कि आप और एक्टिव फील करेंगे, एंथुजियास्टिक फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो जब आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप अपलिफ्टेड हैं, तो नींद नहीं आएगी। अच्छा फील करना बहुत इम्पोर्टेंट है, पर वो डे टाइम में। तो आप सुबह जाएं एक्सरसाइज करने और आप डे टाइम में अपना दिन अच्छे से बिताएं। शाम को आप नेचर वॉक कर सकते हैं, विच इज रिलैक्सिंग एंड कामिंग एंड ग्राउंडिंग। शाम को आप योगा कर सकते हैं, अगेन कामिंग रिलैक्सिंग
0: जी।
1: तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जिनको कैफीन से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कैफीन मत लें शाम को। तो बेसिकली आपका लाइफस्टाइल कैसा है ये बहुत मायने रखता है
0: जी। तो मैम अभी हमने दो डिसऑर्डर की बात की है, इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया की। तो इस डिसऑर्डर को जब हम फेस करते हैं, जैसे कि इंसोम्निया में बहुत कम नींद आती है और हाइपर में कि एक्सेसिव में नींद आती है, तो जब हम इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कोई भी हमारे दोस्त या किसी भी तरह से, तो उसे दूर करने के लिए या इससे बाहर निकलने के लिए कैसे हम क्या कर सकते
1: हैं? देखिए ये स्लीप हाइजीन का कॉन्सेप्ट तो हम बता ही चुके हैं
0: जी।
1: इसके अलावा ये समझना बहुत जरूरी है कि इफ देयर आर थिंग्स विच दे आर डूइंग जो उनको नहीं करनी चाहिए, या देर आर थिंग्स जो उनको परेशान कर रही हैं। तो कई लोग होते हैं जो सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं, उन्हें वो नहीं करना चाहिए, अल्कोहल सिगरेट ये चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप स्ट्रेस में हैं और आपको ओवरथिंकिंग चल रही है रात में और उस वजह से आप नहीं सो पा रहे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एड्रेस करें, क्योंकि देन स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। तो आपको स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत जरूरी है, और स्ट्रेस यूं ही नहीं हैंडल होता है। अगर हो रहा होता तो आप

0: करेंगे, योर माइंड विल नेवर बी एट पीस एंड देन देयर विल बी कॉन्स्टेंट फाइट ऑफ थॉट्स, जिसके लिए काउंसलिंग सेशंस या फिर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की एक कंसल्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है।
1: जी, तो बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से हम इस डिसऑर्डर के बारे में जान सकते हैं।
0: आप अपने नॉर्मल रूटीन से कम सो पा रहे हैं, भले ही वो 4 से 5 घंटे भी क्यों ना, लेकिन आप इतना सोने के बाद, देखिए कई लोग 4 घंटे सोते हैं पर वो फ्रेश फील करते हैं,
1: बिल्कुल
0: उनका वो रूटीन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इंसोम्निया है। देखिए, डिसऑर्डर का मतलब है कि वो आपको स्ट्रेस दे रहा है, उससे आपको वो परेशानी, वो डिस्कम्फर्ट आ रहा है। तो यानी कि अगर आप 5 घंटे भी सो रहे हैं, जबकि आपके 7-8 घंटे सोने की आदत थी,
1: जी
0: अब आप 5 घंटे सो रहे हैं पर उसके बाद आपको फ्रेश नहीं फील हो रहा, आपको टायर्ड, आपको फटीग, आपको एंग्जियसनेस फील हो रही है, आपको स्लीप डिप्रिवेशन के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, आपके डार्क सर्कल्स बढ़ते जा रहे हैं, ओवरथिंकिंग चलती जा रही है, शरीर में हमेशा थकान और शरीर हमेशा टूटा टूटा लगता है, काम में मन नहीं लगता है, मोटिवेशन लैक हो रही है, तो यानी कि अल्टीमेटली फोकस क्या है, फोकस है कि जितने भी घंटे की आप नींद ले रहे हैं पर आप फ्रेश नहीं फील कर रहे और आपको उसकी वजह से दिक्कतें आ रही है, डिस्कम्फर्ट और स्ट्रेस डेवलप हो रहा है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो जब ये तकलीफ होती है तब उसको हम डिसऑर्डर का रूप देते हैं।
1: जी, तो बिल्कुल दोस्तों, हर किसी के साथ ये नहीं होता, लेकिन हाँ, जब ये सारे सिम्टम्स जो मैम ने अभी बताए आपको कि आप फ्रेश फील नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी ऐसी बॉडी में आपको डिस्टर्बेंसेस जो है फील होनी शुरू हो जाती है, तो तभी हम उसे डिसऑर्डर का नाम देते हैं। तो यही एक्सेसिव हो चाहे कम हो, इसी तरह से हम इसे पहचान सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं अपनी इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: 91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मन की ओर। तो आइए अपनी इस बातचीत को कार्यक्रम में आगे की ओर लेकर चलते हैं। बहुत ही खास बातचीत, स्लीपिंग डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और जान रहे हैं कि किस तरह से स्लीपिंग हमें डिस्टर्ब करती है, किस तरह से जो है स्लीपिंग एक भयानक रूप ले लेती है, हमें बीमारियों की तरफ लेकर जाती है। तो यही सब जानने के लिए आप सभी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए मैम से और बहुत कुछ जानकारी आप सभी तक पहुंचाते हैं, जानते हैं और अपने आप को अवेयर करते हैं। तो मैम, जैसे अभी हमने बात की कि जैसे कम नींद आती है तब भी हमें डिस्टरबेंस होती है, या सबसे बहुत ज्यादा ही नींद हम ले लेते हैं तब भी हमारी बॉडी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, या हम उतनी एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते जितना कि होना चाहिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ कि जब वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर हर किसी के साथ कोई साथ में हो ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग अकेले भी रहते, बुजुर्ग की हम बात करें तो उस तरीके से जब उन्हें बहुत गहरी नींद में जब दबाव मतलब एक तरह से महसूस होता है, जब उन्हें बहुत एक भयंकर सा सपना वो देख रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि कोई हमें मार रहा है या कोई हमें हर्ट कर रहा है, तो इस एक्सपीरियंस को हम स्लीपिंग डिसऑर्डर में लेंगे या किस तरह से इसे हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? मतलब
1: देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। एंड इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब व्यक्ति अपने REM स्लीप में होता है, यानी कि जो लास्ट फेज ऑफ स्लीप है, उसमें हमारा जो बॉडी का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो अल्टीमेटली हमारे नेक के नीचे के सारे वॉलंटरी फंक्शंस को शट डाउन कर देता है, यानी कि वी कैन नॉट मूव आवर बॉडी, जिसकी वजह से अगर उस फेज के दौरान हमारी आंख खुल जाए या हम अवेयरनेस में आ जाए, क्योंकि ये एक लास्ट फेज होता है, रिमेम्बर स्लीप वेक का एक साइकिल है जो रिपीट होता है 90 मिनट्स में, तो REM फेज के जस्ट बाद NREM का फर्स्ट फेज आ जाता है जिसमें डेल्टा वेव से शिफ्ट आता है अल्फा वेव एंड थीटा वेव में। तो अगर अल्फा वेव आ गई तब जब REM फेज खत्म ही नहीं हुआ, ऐसे में व्यक्ति जग जाता है, यानी उसकी आंख खुल जाती है, पर क्योंकि उसके अंदर डेल्टा ब्रेन वेव भी प्रेजेंट है तो वो जो सपना देख रहा था वो कंटिन्यूड रहता है। ऐसे में कई लोगों को हेलुसिनेशंस भी होते हैं। तो स्लीप में बेसिकली बोला जाता है कि जो भी सपना हम देख रहे हैं अल्टीमेटली वो हेलुसिनेशंस ही होते हैं, क्योंकि वो हम आंख बंद करके हेलुसिनेट कर रहे हैं, बिकॉज सपना एकदम सच लगता है जो कि रियल नहीं होता, इसीलिए उसको हेलुसिनेशन
0: जी बिल्कुल। और ऐसा भी होता है ना कि जब हमें वो सपना मतलब कि देख रहे होते हैं हम, और जैसे लग रहा होता है कि कोई हमें मारे, और हम रियल में ना चिल्ला रहे होते हैं नींद में ही, हम तो ऐसे मतलब कि जोर जोर से आवाजें लगाते हैं, और जब तक कोई दूसरा पर्सन उन्हें उठाता नहीं है तो तब तक वो उसी एक पोस्चर में और उसी दर्द में जो है चिल्लाते रहते हैं।
1: राइट। तो इसमें देखिए, स्लीप पैरालिसिस में जो एक शिफ्ट आता है साइकिल का, ये उसमें डिसऑर्डर आ गया, वो ऑफ बैलेंस चला गया, ब्रेन वेव जिस समय पर जब होनी चाहिए थी तब की जगह वो पहले आ गई। तो अब जब व्यक्ति उठा है पर उसका नेक के नीचे के वॉलंटरी फंक्शंस तो अभी भी शट डाउन है ना, और सपना भी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि वो जो सपना देख रहे थे वहां का कोई कैरेक्टर या वहां की सिचुएशन रियल है। समटाइम्स पीपल कैन ऑल्सो विटनेस एंड सी समवन स्टैंडिंग क्लोज टू देम, या फिर कई बार उनको लगता है कि हमारे ऊपर ही कोई बैठा हुआ है
0: जी,
1: क्योंकि इतना कॉन्फ्लिक्टिंग रहता है ये एक्सपीरियंस कि ये व्यक्ति में बहुत एंजाइटी क्रिएट कर देता है, डर क्रिएट कर देता है, और एंजाइटी का मतलब होता है अननोन फियर। तो यानी कि डर किससे लग रहा है इंसान को ये भी नहीं पता
0: नहीं
1: होता
0: पते।
1: तो अननोन या अनसर्टेनिटी इंसान के लिए और हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा डिसकंफर्टिंग होती है, और क्योंकि व्यक्ति अपने आप को मूव भी नहीं कर पा रहा है, सो पर्सन फील सो हेल्पलेस कि उनका ये जो एक्सपीरियंस है ये और ज्यादा बड़ा होता जाता है। तो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और अ मिनट इंसान ऐसी ही स्टेट में रहता है जो कि बहुत टॉर्मेंटिंग उनके लिए एक्सपीरियंस बन जाता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो आप सभी भी इस बात को इस समय समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस होता है,
1: और लोगों को क्योंकि पता नहीं होता तो इसलिए उनको लगता है कि कोई भूत की प्रेजेंस है या इस घर में कोई अच्छी एनर्जी नहीं है, तो लोग अक्सर इस जो भी चीजें लोगों को समझ में नहीं आती ना रुचिका, लोग उसको भूत से जोड़ देते हैं, क्योंकि भूत भी अपने आप में एक ऐसी एंटिटी लोगों ने बना रखी है कि उनको नहीं पता कि वो खुद क्या है, तो इसलिए हर वो चीज जो समझ में नहीं आती वो भूत से लिंक हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आप सबका ये जानना और समझना कि कैसे स्लीप पैरालिसिस के दौरान जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो प्योरली साइंटिफिक कॉजेस की वजह से हो रहे हैं।
0: जी तो बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा कहीं ना कहीं स्लीपिंग पैटर्न जो डिस्टर्ब हुआ है उसकी वजह से हम
1: ये
0: इसे
1: देखिए डायरेक्टली लिंक्ड होता है स्ट्रेस से जो भी तनाव है, क्योंकि देखिए स्लीप इज समथिंग वेरी वेरी नेचुरल दैट हैज टू अकर, जिसकी वजह से अगर कोई भी नेचुरल चीज डिस्टर्ब है तो मतलब देर इज समथिंग जो नहीं होना चाहिए। हमारा ड्रीम, जो भी हमें ड्रीम्स आते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से आता है, जिसकी थ्रू हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमसे कम्युनिकेट करता है कि देर आर थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, पर हम अपने माइंड को उसकी आवाज को दबाना और उससे एस्केप करना या उसको अवॉइड करना बहुत अच्छे से जान चुके हैं, विच इज सो रॉन्ग एंड सो अनहेल्दी फॉर ईच वन ऑफ अस, बट येट ड्यू टू अनअवेयरनेस वी टेंड टू डू इट, जिसकी वजह से परेशानी और बढ़ती ही जाती है।
0: बिल्कुल,
1: तो इसीलिए जो भी स्ट्रेस है या जो इमोशनल सप्रेशन है उसको ना करके, उसको छोड़ के अपने स्ट्रेस को एड्रेस करना जरूरी है, अपने इमोशनल सप्रेशन की जगह उसको एक्सप्रेस करना जरूरी है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं लाइफ में उनको रिजोल्व करना जरूरी है। जैसे जैसे वो चीजें रिजोल्व होंगी वैसे वैसे स्लीप की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती रहेंगी।
0: बिल्कुल दोस्तों, जब तक आपके माइंड में वो बातें चलती रहेंगी, जब तक आप उन्हें एड्रेस नहीं करेंगे, जैसे कि मैम ने कहा सबसे पहले तो हमें ये बहुत जरूरी है जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन्हें एड्रेस करना, स्ट्रेस है उसे भी अच्छे से जानने की किस तरह से क्यों और क्या रीजंस हैं, क्योंकि जब तक हम इससे फेस नहीं करेंगे, अच्छे से समझेंगे नहीं, तो तब तक वो हमें परेशान करते ही रहेंगे, और ये फिर स्लीपिंग का जो डिस्टर्बेंस है वो हमें हर टाइम जो है वो फेस करना, तो और कहीं ना कहीं फिर बीमारियां, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारी नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो रही है तो वो बस नींद ही डिस्टर्ब होगी, नींद ही नहीं आएगी, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी बीमारियां जो है फिर
1: वो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स रहेंगे, आपको एंजाइटी रहेगी, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ठीक से काम नहीं करेगा, आप सही जजमेंट्स नहीं ले पाएंगे, आपका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, और इन सबकी वजह से इंसान फिर और परेशान ही होता है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, उसका कॉन्फिडेंस होने लगता है, उसकी जॉब में परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट आ जाता है, रिश्तों पर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि फिर इंसान ना चिड़चिड़ा हो जाता है,
0: चिड़चिड़ा बिल्कुल,
1: मूड इम्पैक्ट होता है। सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद वन अनदर कि स्लीप का ध्यान रखना जरूरी है,
0: जो कि आज के समय में बहुत ही कम है, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चों में, तो खास करके बहुत ही कमी देखने को मिल रही है कि वो अक्सर अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैम बच्चों को हम क्या रीजंस दे सकते हैं, मतलब बच्चों को जो नींद पूरी नहीं हो पाती है?
1: देखिए बच्चों के लिए तो आज के समय पे सबसे बड़ा कारण है उनका फोन और उनके पेरेंट्स का लाइफस्टाइल। जैसे जैसे एक पेरेंट अपने छोटे बच्चे को रूटीन में डालेंगे ना, वैसे वैसे बच्चा सीख जाएगा, क्योंकि एवरी बिहेवियर इज अ लर्न्ड बिहेवियर। आप बच्चे को सिखा सकते हो, और बच्चे क्योंकि बच्चा इज लाइक अ मोल्ड, आप उसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, यू नो वो एक सॉइल की तरह होता है, वो एक मिट्टी की तरह है, आपके ऊपर है ये कि आप उसको कैसे किस तरह का एनवायरनमेंट और किस तरह का लाइफस्टाइल में उसको ढालना चाहते हो।
0: जी, और मैम एक बात मैं यहाँ पे ये भी बताना मतलब कि जानना चाहती हूँ कि जैसे बच्चों के अगर अभी हमने फोन की बात की है तो वो तो हमें पता है कि एक फोन की एडिक्शन बच्चों के लिए बहुत ही गलत है, जो फोन वो रात भर यूज कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है वो पढ़ाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पढ़ाई का नाम दे रहे हैं तो कई बार बच्चे लैपटॉप जो है काफी लेट नाइट तक यूज करते हैं, फोन भी यूज करते हैं, कुछ पढ़ाई के लिए भी यूज करते हैं, तो उसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस पे, क्या उससे भी स्लीपिंग डिसऑर्डर जो है कहीं ना कहीं हमें फेस करना पड़ता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए हर चीज हमारे न्यूरोकेमिस्ट्री से कनेक्टेड है, अगर हम गलत टाइम पर सही चीज कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो
0: सकते। बिल्कुल, मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का ये मानना होता है कि अगर वो फोन पे गेम्स खेल रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि गलत है। लेकिन अगर वो उसी समय जो है लेट नाइट तक, चाहे वो 12 बजे तक, 1 बजे तक, जब भी, 2-2 बजे, कुछ कुछ बच्चे तो ऐसा होता है कि 2-2 बजे तक सोते नहीं है, वो 2 बजे सोना है उन्होंने, तो वो लैपटॉप में पढ़ाई कर रहे हैं या फोन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये पढ़ाई कर रहे हैं।
1: देखिए पेरेंट्स में ना एक बहुत स्ट्रांग सोच ये रहती है कि अगर रात को बच्चा पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, वो मेहनत कर रहा है, हम उसको मेहनत से नहीं रोकेंगे, क्योंकि शायद उन्होंने भी ऐसे ही किया होगा। लेकिन अगर आप इस आज के टाइम के दौर पे अगर मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के साथ चीजों को देखें और समझें, तो आप ये समझिए कि व्हाट आर यू पुटिंग एट कॉस्ट, यानी कि आप बच्चे की नींद पूरी नहीं होने दे रहे, जबकि नींद के दौरान हर व्यक्ति में उनकी ब्रेन सेल्स रिजुविनेट होती हैं, हमारे जो ब्रेन की सेल्स हैं वो रीडेवलप होती हैं, मेमोरी कंसोलिडेशन होता है, तभी बच्चे को चीजें याद भी रहेंगी। तो जो बच्चा पढ़ रहा है पर सो नहीं रहा है, नींद नहीं पूरी कर रहा है, उसको चीजें याद भी नहीं रहने वाली हैं, और फिर उस चीज को याद रखने के लिए लोग सब्सटेंस में चले जाते हैं रुचिका,
0: बिल्कुल,
1: और फिर पेरेंट्स के लिए वो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एज पेरेंट्स आप ये मत सोचिए कि बच्चा रात को पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, आप ये सोचिए कि बच्चे की नींद पूरी हो रही है कि नहीं, क्योंकि जो काम बच्चे के लिए उसकी बॉडी, उसका ब्रेन और जो नेचुरल चीजें हैं वो कर सकती हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। अब इसमें क्या ही फायदा है कि बच्चे ने 2 साल या 3 साल 4 साल मेहनत करी, फिर वो कॉलेज में पहुंचा, और कॉलेज में जाने के बाद अब जब उसको नींद नहीं आती है तो वो रात में फोन चलाता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके हैं, और फिर वो सब्सटेंस लेकर अपनी नींद पूरी करता है, या सुबह उठकर कॉलेज नहीं जा पाता है, या फिर अपने यूथ में ही वो इतना फटीग फील करने लगता है कि उसको हर चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आता, वो किसी चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं आता। तो इससे एज पेरेंट्स आपने क्या ही अचीव कर लिया। पर आप सोचिए अगर आपका बच्चा 5-10% कम नंबर ले भी आए यदि, बट उसका जो एक रूटीन है या उसकी जो एक गुड हेल्थ है वो सस्टेन कर पाएगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो बुरी आदतों से भी दूर रहेगा। सो व्हाट वुड यू प्रिफर? तो हम तो यही बोलेंगे एज पेरेंट्स को कि आप ये मत सोचिए कि एकदम से बच्चा एकेडमिकली पीक ले ले और उसकी मेंटल हेल्थ से अगर प्राइस पे करना पड़ रहा है बच्चे को तो वो करे, क्योंकि उसके बाद मेंटल हेल्थ खराब होने के बाद वो उसके रिलेशंस में भी इम्पैक्ट आएगा, विच ऑल्सो इंक्लूड चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशन।
0: जी,
1: सो यू हैव टू थिंक कि बच्चे का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, क्योंकि उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों यही मैं कहना चाह रही थी और आप सभी तक ये बात पहुंचाना चाह रही थी कि अक्सर हम बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं कि बच्चे लेट नाइट तक पढ़ाई कर रहे हैं तो पेरेंट्स को वहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। खैर अच्छी बात है, लेकिन हाँ हेल्थ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। जब तक हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, 2 दिन लगाकर हमने पढ़ाई कर ली और 1 मंथ लगाकर हमने बिस्तर पकड़ लिया तो उसका फिर क्या ही फायदा रहेगा,
1: या
0: तो
1: फिर पढ़ लिया इतना और एग्जाम टाइम पे जाके ब्लैकआउट हो गया, याद ही नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा भी होता है बच्चों के साथ बहुत।
0: जी जी, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि हर चीज का एक लिमिट होनी चाहिए और एक रूटीन के साथ जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो फिलहाल हमें भी कार्यक्रम में अपने शेड्यूल के साथ आगे बढ़ना है और एक समय है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, तो मिलते हैं आप सभी के साथ इस छोटे से गीत के बाद।

0: दोस्तों एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारी इस बहुत ही गंभीर सी और खास बातचीत के साथ। तो हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप सभी भी इस बातचीत को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके और जानते हैं मैम से और बहुत सारी जानकारियां स्लीपिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड। मैम, अभी आपने बात की स्लीपिंग पैरालिसिस की, तो वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हमारे दोस्तों को उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कई बार कि हम नींद में, जब गहरी नींद में होते हैं या जैसे भी है, हम कहीं खो जाते हैं नींद में, तो हम कई बार ना रोने लग जाते हैं, तो उसे हम कैसे रिलेट करेंगे इस मतलब कि डिसऑर्डर के साथ या स्लीपिंग के साथ? किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, या ये क्यों होता है हमारे साथ?
1: देखिए, आप जिस एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं, इसमें अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि वो कोई सपना देख रहे होते हैं और उनको वो इतना रियल लगता है कि फिर वो अचानक से जब उठते हैं तो उनको वो एंग्शियसनेस रहती है, उनको वो घबराहट, वो डर रहता है जो भी उन्होंने सपने में दिखा होता है, और फिर उनको अचानक से रोना आ जाता है। तो बेसिकली, और ऐसा भी होता है कि लाइक असली में, मतलब सपने में भी रोए और असली में भी रोने लगते हैं, और फिर आंख खुलती है और इंसान जो है वो बहुत घबराया हुआ होता है, दिल की धड़कनें तेज हुई होती हैं। तो ये जो होता है, ये थोड़ा स्लीप पैरालिसिस से थोड़ा हटके होता है, इसको हम बोलते हैं नाइटमेयर। तो ये नाइटमेयर डिसऑर्डर है। नाइटमेयर्स में बेसिकली जो हमारे सपने होते हैं वो इतने खौफनाक और दर्दनाक होते हैं कि वो हमारा जो कोई भी पास्ट में वूंड रहा है या पास्ट का कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है, वो हमें बार बार आता है। ये काफी ज्यादा लिंक्ड है विद PTSD, पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ। जो लोग अपने पास्ट में एक बहुत स्पेसिफिक ट्रॉमा से गुजरते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद उनको उसी ट्रॉमा से रिलेटेड, उसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स हाउ, लाइक नाइटमेयर थोड़ा अलग है देन स्लीप पैरालिसिस, बट यस, दोनों में ही हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब्ड रहती है।
0: जी बिल्कुल, तो ये भी हमारे स्लीपिंग का पार्ट है। तो अक्सर जब हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो धीरे धीरे ये सारे सिम्टम्स हमें आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि जो एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी नींद का, हमें वही फॉलो करना चाहिए, जो क्योंकि एक बार हमने अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी तो वो लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ चलती रहती है। तो इससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैम ने बहुत ही अच्छे से बताया है कि चाहे आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी आप मेहनत करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन नींद को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, क्योंकि नींद हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक प्रॉपर वे में लेना, जो साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल है, उसे पूरा

0: होने के लिए समय लगता है और उसे हमें जरूर पूरा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी बॉडी के लिए खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, तो उसी तरह से नींद भी उतनी ही जरूरी है। फिर हमें डार्क सर्कल्स आ जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं क्या लगाएं क्या लगाएं, क्योंकि हमारे फेस का थोड़ा सा वो फिर अच्छे नहीं लग रहे हैं हम देखने में, तो हम बहुत सारे प्रोसीजर फिर अपनाने शुरू कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उस स्टेज तक जाए ही ना,
1: बिल्कुल
0: है ना, आप पहले ही सतर्क हो जाए।
1: एग्जैक्टली, आप प्रॉब्लम को रूट लेवल से सॉल्व करें, उसकी गहराई को समझे। और जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था, नींद एक लग्जरी बनते जा रहा है, तो लग्जरी नहीं वो नेसेसिटी है, इस बात को समझें और अपने जीवन में अच्छे से नींद को प्रायोरिटी दें।
0: जी बिल्कुल। पर दोस्तों एक बात और आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये स्लीपिंग, नींद कितना छोटा सा शब्द है ना, लेकिन जब इसकी हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा सा शब्द है, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, जो कि हम आपको इतनी जल्दी जल्दी में तो बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम आपको पूरी डिटेल में ये जानकारी देना चाहते हैं। तो अगले एपिसोड में इसका अगला पार्ट जो है हम जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, लेकिन आज की इस हमारी खास बातचीत से जुड़ा अगर कोई भी आपका सवाल है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है और अगर आप इस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, तो आप हमारे सेंटर, हमारे मनोवैज्ञानिक मैम है, तो आप इनके साथ जो है जुड़ सकते हैं। और अगर जरूरत है आपको सेशन लेने की, काउंसलिंग सेशन की, तो जरूर दोस्तों बिना हिचकिचाहट जो है अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग सेशन लेने चाहिए। उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उसमें पूरी प्राइवेसी रखी जाती है, आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है किसी तक नहीं पहुंचाई जाती, तो पूरा आपका ध्यान रखा जाता है। लेकिन हाँ, पहल आपको करनी होगी। अगर आप अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं, अगर आप खुद से प्यार करते हैं, तो ये स्टेप आपको लेना होगा। तो हमारे सेंटर का पता रहेगा,
1: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला, धर्मशाला, और फोन नंबर है 9354134057। ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा।
0: जी दोस्तों, तो आप सभी तक नंबर भी पहुंच चुका है और सेंटर का पता भी पहुंच चुका है, तो देर किस बात की है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कोई भी कमी आपको फेस करनी पड़ रही है, तो फटाफट से फोन उठाइए, डायल कीजिए और बात कीजिए, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप सभी तक पहुंच जाएगा। पर अगर सवाल है जो हमें बात करनी चाहिए आप सभी तक, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी तक या और लोगों तक आप चाहते हैं कि इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, तो आप उसके लिए भी हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारे जो है इस पे यूट्यूब पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हमें किस तरह से एडिशन करनी चाहिए या किस तरह से हमें बातचीत और इसमें एड ऑन करनी चाहिए। तो फिलहाल समय हो गया है अपने दोस्तों से अलविदा लेने का। तो बिल्कुल दोस्तों, आज की ये खास बातचीत आप सभी ने एंजॉय की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी तो अब दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। आप सभी के साथ फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत के साथ, इसी स्लीपिंग डिसऑर्डर की नई बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रतिनिधियों के संघ AAERI के साथ साझेदारी में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म AAERI सत्यापन का शुभारंभ किया। मंत्रालय ने बताया कि डिजीलॉकर से जुड़े इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का सुरक्षित और डिजिटल तरीके से सत्यापन कर सकेंगे। झारखंड सरकार आज JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से बातचीत की। ये बैठक रांची के गेस्ट हाउस में हुई। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले 2 सप्ताह से रांची में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद ये बातचीत हुई है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल शाम पहली औपचारिक बैठक हुई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए IED विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के खिलाफ विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलुवांच मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप के 3rd दिन भारत को अपना पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ये लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना रहे तूने।
5: थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर।
4: देना
5: बहुत मस्त लगे आपको।
4: लेना
5: सर। सर सर सर
4: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: ओके सर।
4: ले
5: सलाम।
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
6: तुझे पूरा यकीन है?
7: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
8: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
6: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
9: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
8: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
10: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
11: सही है यार।
10: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
11: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
10: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुलशन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशीर्वाद सूचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो रंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो रंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ले लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है, आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना है तूने।
5: थैंक यू सर। ओ, जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड
5: है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर,
4: देना।
5: बहुत मस्त लगे आपको।
6: सर सर सर,
4: ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: सलाम।
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
7: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
8: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
7: तुझे पूरा यकीन है?
8: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
9: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
7: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
10: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
9: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
11: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
12: सही है यार।
11: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
12: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
11: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ये लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ले लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म

संभव और जय हिंद का नारा है, जहां हर जुबा पर सर्व धर्म संभव और जय हिंद का नारा है। निश्चल पावन प्रेम से भरा वो

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना है तूने।
5: थैंक यू सर। ओ, जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड
5: है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर?
4: देना।
5: बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर सर सर।
4: ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: चल हम
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
6: तुझे पूरा यकीन है?
7: चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटी की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
8: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
6: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
9: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
8: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
10: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
11: सही है यार।
10: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
11: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
10: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?

0: नमस्कार श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और हम सचिन कपूर हाजिर है कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर। क्या हाल चाल ने श्रोताओं, तुम उम्मीद कर रहा हाल चाल ठीक बुने तो सब खरे बुने और अपनी जगह खुश बुने तंदुरुस्त बुने अपने घरे खुश बुने तंदुरुस्त बुने। बिल्कुल लाइव कार्यक्रम के आसो है लेकर हाजिर भुवन श्रोतों जोड़ता हूँ पंच आसू तुसु सोगे और तुसु आसू सोगे के आसो यहीं बने रहना है श्रोतों और अनेकों जानकारी होगी भी तुसु आसू रूबरू करवाना और इन्हें बहुत सारे श्रोतक एन सो भी आसू होगी बिल्कुल कनेक्ट बुंदन था सो श्रोता भी तुसु होगी आसू जरूर कनेक्ट करवाना है इन श्रोतों। तुसु सब रेडी गुंजन सोगे जुड़ने वास्ते कॉल कर सकते हैं जनाब 708 709 पर नंबर आक मौके फिर आऊँ और शेयर करना हाँ 708 709 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होनी सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी है वो कि साझा कर सकते हैं। एक लारा खास ख्याल रहे कि जानकारी किया सो साझा करने लाइक जरूर बुआ श्रोता हूँ जानकारी किया सो वीडियो मंच दसने लाइक जरूर बुआ। तो चलिए इन श्रोतागण असुओं के कनेक्ट पूछ गया हिन ऑलमोस्ट ता पूछ लेंदन पहले कौन बोलूंदन और कड़ी थो बोलूंदन। नमस्ते जी, हेलो, नमस्कार जी, बरमोरा थो बोलूंदन।
1: हां जी,
0: अच्छा क्या बात है, भरमौर कहा जगह था बलुंदन?
1: भरमौर खानी हो।
0: क्या बात है, क्या बात है, एक मिनट है थोड़ा फेसबुक रे जरिए भी किया सो लाइव चली इंदे ना ताकि इंदे श्रोता जो पता लग गया छा कि इंदा कार्यक्रम किया सो भरमौरा तक भी किया सो हुन देन मनो है ना जी। ता क्या है तो है प्यारे दे ना क्या दसो अपना।
1: दक्षु,
0: दक्षु, दक्षु जी खानी थो बलुंदन तो है।
1: हाँ जी,
0: क्या बात है, पहले तो ये दसा दक्षु जी की खनी मौसम कदे कदे आ
1: आज तो बदला
0: बदला ब्याकनी बरखा बोए कि ना बोए खनी मंज
1: बुची कर दे फिर चुकी अच्छी कर दिया।
0: अच्छा बुची करी चुकी की फिर।
1: हाँ जी,
0: चलो अच्छा मुझे आग गल दसा तो है कदी धर्मशाला छूरे।
1: हाँ जी,
0: कदे लगदा धर्मशाला तुसु?
1: बड़ा ही शैल,
0: बड़ा ही शैल। तो जरूर भेजे और अपनी कविता की सो अक मौके सो फिर लाइव रे जरिए के सो सुनाई दे ला।
1: हां जी, जी। कने मेरी परमाऊ सकी तू है भाग सुना घर भजन ला ने कमल ने निकल गऊगा।
0: भाग सुना घर भजन ला मेरे भाग सुनागा।
1: हां जी, हां जी,
0: चलिए ठीक है जी जरूर सुन ले तू सो ना जी।
1: हां जी,
0: और कुछ और खास गल तुसु दसनी बुआ?
1: नहीं नहीं,
0: चलिए ठीक है जी जरूर तुंदी फरमाइश पूरी कर ले है। नमस्ते, श्रोतों एफएम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और सचिन कपूर है इस वक्त लाइव कार्यक्रम चल रहा। चलिए तो पहले धर्मशाला रा मौसम की सो भया कर लेंदे तुसु कि इस समय धर्मशाला रा मौसम किया आसो क्या बल्लू करता हा तो शो तो इस समय 19 डिग्री सेल्सियस रे आसपास के सो धर्मशाला रा मौसम आ और नमी री गल करूँ तो 86% की आसो नमी है शो तो विजिबिलिटी 11 किलोमीटर तक है यानी कि आज भी आंकड़ा की आसो अंबर तूणा बर उन्हें रिम झिम किया सो बरखा जरूर लग रही है शो तो लेकिन इतनी ज़्यादा बरखा किया सो ना बोया मतलब सो बरसाड़े वाली बरखा किया सो ना बोया ना आगाज़ ज़रूर असू करना है और फरमाइशरा दौर के असो भी असू ज़रूर पूरा करना है अन्य जानकारी के अनसो भी तुसो के असू ज़रूर पूरी करनी है इन शतों ता आइए जी चल देन आगाज़ री किनारी है ना और कुछ खास गल्ला इन दे खास श्रोता के ना सभी तुस हो गया है जरूर शेयर कर ले और साझा कर ले। ताइए जी हनंदन तू सभी जो है प्यारे दे गीत तुंदे सभी रे रेडियो सेट मा रेडी गुंजन थरम शाला मंच गूंज अपने पन रे और गूंज आइंदे सभी प्यारे प्यारे श्रोता रे।

0: चौथो एफ एम बैंड 91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और हूँ सचिन कपूर तू सो के बिल्कुल लाइव इस समय रेडियो सेट पर और बिल्कुल फेसबुक रे माध्यम तो भी है बिल्कुल लाइव इन शो तो ताइए कुछ एक खास जानकारी के अनुसो तू सो के शेयर कर देना और बिल्कुल इतने टेक्निकल टीम की असो बिल्कुल इस समय राउंड पर रहा जो कि इन द सिस्टम की असो थोड़ा करिए अपग्रेड हुआ है शो तो और इस बीच की असो इन द टेक्निकल टीम थो सचिन चौधरी कुलदीप जी और अन्य इन साथी के अनुसो बिल्कुल इस समय सो चेक करो कर दिन तैयारी और थो सो की सो थोड़ा करी मैसेज भी आके इन दे श्रोता री आवाज़ किया सो थोड़ी घट गच्छू कर देता हूँ। धन्यवाद करना चाहूँ अपनी की टेक्निकल टीम मारा खासकर सचिन चौधरी जी और कुलदीप जी रा कि सो असो किया अवगत करवाऊ कर देने है गल्ला थो फिलहाल थोड़ा करी और हगू है चल देन और मौसम तो जुड़ रही जानकारी की सो तुसु तक पहुँचन दें सो तो थोड़ा करे फिर बदलाव की सो पुछू करता हूँ तुसु दसना चाहता है वह मौसम री हर चाल पर की आसो नज़र रहने हैं सो तो जी बिल्कुल मौसम रहे बदलते मिजाज और अचानक भूने वाली बरखा था किसान व बागवाना किसान व बागवाना पर भूने वाले नुकसान जो घट करने वास्ते कांगड़ा जिले के स्वाधुनिक मौसम निगरानी व्यवस्था तैयार करी है सो तो ज़िला वे 7 विकास खंड में के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गोज स्थापित हुए हैं सो तो इन उपकरणों तो पंचायत स्तर पर बरखा तापमान हवा नमी और अन्य मौसम संबंधी आंकड़े वैज्ञानिक तरीके थों के ऐसा रिकॉर्ड भूने हैं सो तो जत्थों किसान मौसम वे बारे किया सो जानी सकता है जत्थों किसान के सो मौसम रे अनुसार खेती रे बेहतर योजना के सो बनाई सकता है सो तो परियोजना रे तहत जिला में 14 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 347 ऑटोमेटिक रेन गोज स्थापित भूने हैं सो तो और इस पंचायत रे हर मनु वास्ते जो कि खेती करता तिन्या वास्ते के सो बहुत ही अच्छी और बड़ी खुशखबरी है सो तो कांगड़ा हरी पंचायत में लगने हैं 360 आधुनिक उपकरण खेती में किसाना जो है मुलना है सो तो लाभ सभी वास्ते बहुत बहुत बहुत ज़्यादा किया सो ये खुशखबरी है ना जानकारी रहा पिटारा के श्रोताओं सो ये चलते रहने तो सब बन रहे हैं इस समय एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गया और इन दे अगले श्रोता के सो आसू के बिल्कुल कनेक्टेड हिन ता कनेक्ट करते हिन और पुछ दिन कौन बल्लून दिन कड़ी थो बल्लून दिन नमस्ते जी महाराज नमस्ते नमस्ते ठीक न और कर
1: मेरा जेल थोड़ी जिस का हो हम रेडियो लगा तो भंगा ना हुए
0: अच्छा अच्छा
1: ये लहुनु जरा बड़ी ना मैं
0: जी जी
1: ये रे प्रांत फिर छो लाव दी थी ने दवाई दी गल छिड़कने वाली
0: जी जी जी
1: उदे प्रांत फिर बंद बजी
0: अच्छा जी
1: हाँ जी मैं आज फिर लगाओ मैं क्या पता कर रहा चली कि सूर्य मैं
0: चले जी तो है इतना प्यार कर देन इतना आशीर्वाद रंदा तुंदा थैंक यू सो मच और अपना प्यार और अपना आशीर्वाद की सो सदैव सु पर ही बनाए रख जी तो है
1: सियाने सियाने के अंधे ही है ना
0: जी जी जी
1: बल्लू जी खड़ी गल ना बलनी हो तो बुरी गल ना करानी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है?
0: क्या बात है
1: खरी गल ने बलनी तो बुरी गल भी निकलानी
0: खरी गल ने बलनी तो बुरी गल भी निकलानी
1: बिल्कुल ना महाराज जी
0: अच्छा क्या बात है तेरा तो है मतलब अर्थ क्या कड्डो है कुछ अर्थ कड्डो बुना तेरा
1: अर्थ सावे तो शी पता है कई मन बड़े बड़े मन या कई कुछ पड़ी गल में ना
0: अच्छा अच्छा अच्छा मतलब तू सो कस की कुछ बोल रहे थे नहीं
1: ना मिल जाएगा सुखना ना
0: अच्छा
1: आज का सीधा कोई मैंने ना थे महाराज
0: अच्छा चलिए तो बड़ा खुश मिजाज इंसान इन हमेशा खुश रहने वाले इंसान कोई भी गल के सो दिला ना लंदे तो है ना जी तू सो थाऊं ता असु बड़ा कुछ सीखने जो मिलदा जनाब
1: और जनाब बरखा बरखा वैसे लगती है अब लोग क्या बन जाए मेरा जो इस तारा थी जो सिग्रां था
0: जी बिल्कुल आज कुरला भाई को शायद है ना जी
1: आज आज देखी हो जी क्यों भी है
0: आज भाई को जो भी है
1: आठ आठ ही से लेने था
0: आठ अगले लेना आठों बाद कुरली भाई गाना है ना
1: जी महाराज
0: कुरला तो घाटी रहो आ जाना
1: बस इस राती रोना
0: राती रुंदे चुपके चुपके रुंदे
1: बिना ना
0: नहीं,
1: रोना मन सामने ना रोना
0: मनु सामने ना
1: इसे
0: रोना ना, चुपके चुपके रुंदे है ना।
1: हाँ जी हाँ जी
0: और एक कथा, ये जो कथा रखी लिया, ये स्टोरी रखी लिया, या जो इंदे सियाने कहानी बनो रहे, ये वाकई में हकीकत है ना कि मर्द की जो सब भी सामने खड़ी रुंदा, चुपके चुपके तो रुंदा है ना।
1: बस हम यही गल
0: बस यो
1: लगता
0: कोई भी दुख भुला, कोई परेशानी भुले जाए, घर री परेशानी भुले जाए, नौकरी री भुले जाए, अन्य कोई और तस यो दुख तकलीफ भुला, परेशानी भुले, तो तस बेचारे चुपचाप अपने अंदर के आंसू घुटना ना, अपने आप जो घुटना और गल्ला ना दसनिया ना,
1: हाँ जी हाँ जी
0: रीति चले आए, परंपरा चले
1: हाँ
0: आया।
1: जी परंपरा चली आई महाराज।
0: बिल्कुल जनाब,
1: अच्छा
0: बिल्कुल
1: सियाने का गल ठीक है भाई
0: जी
1: जी। हाँ
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल।
1: नोएता जी
0: नोईता जी, बस जी था नोईता जी है कि आज कुरला भाई गो। तबे
1: हाँ ठीक है महाराज सो
0: कुरली है दे, कुरली क्या है, कुछ कर ली है ना।
1: रोन धोनी लाम दिया
0: चलो अबे क्या बोल ले सकते, इतिहास गवाह आई थी।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: कुरली तो लाने है थोड़ा करे ठूस ठूस ना।
1: जी हाँ जी हाँ जी
0: जी
1: तो सुननी कुछ गीत सुनाई दिया महाराज जी
0: जनाब कमाल
1: बिल्कुल
0: है, तुंदे फरमाइश असु जरूर पूरी करने, सुनी भूंकू रखी थोड़ा तुसो। अच्छा हरदेव जी, मैं कदी तुसो सवाल ना पूछू, तो अक्सर सुनी भूंकू रखी असो गीत हूँ देन, क्या मांजरा
1: जी
0: इति पूछू, क्या
1: महाराज जी
0: कति वास्ते हूँ देन।
1: ये बड़ा पुराना गीत आज बड़ा सोहना गीत है जनाब
0: हाँ जी,
1: हैं जी ये दिले लगने वाला गीत है
0: दिले लगने वाला गीत है, क्या बात है।
1: बिल्कुल
0: और सोगी सोगी ये सच्ची लव स्टोरी भी है ना जनाब।
1: बिल्कुल महाराज
0: ता चलिए, तो है शायद अपनी याद दा के ना सो ताज़ा कर दे भूने ने, है
1: हाँ जी हाँ जी
0: ना।
1: महाराज
0: चलिए ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच, और ज़रूर तुसु सू गीत होने लै है तुंदी फरमाइश में।
1: ठीक है महाराज जी
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते महाराज
0: तो FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा, और कार्यक्रम RJ सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव होनो कर दे हिन रेडियो सेट रहे माध्यम तो 91.2 MHz पर, और बिल्कुल लाइव रहे सोगे सोगे श्रोताओं तू सो दसना चाहता कि तो है फेसबुक रहे माध्यम तो भी इन दे बहुत सारे श्रोता के सो जुड़ू कर देन, अमूराज राजपूत, जय शिवा भाई, सही गल बिल्कुल। और अन्य और इंदे साथी के अनसो असूगी जुड़ रहे हैं, तो तुम्दा भी बहुत बहुत आऊँ स्वागत करनो हाँ। और चले जी कार्यक्रम में जानकारी रहा सिलसिला यहीं चलते रहना हाँ, और लेकर चलते तू सब भी जो फरमाइश रहे दौर जी किनारी हूँ इंदे इन श्रोताओं कमल नहरी गौरा है गीत।

0: नमस्ते जी। हेलो,
1: जी
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार। हाँ
0: ठीक ठाक ना? करे
1: जी
0: लगरिन।
1: कराना
0: अच्छा, आज ही कौन बल्लून देन और कड़ी थों बल्लून देन?
1: वर्णिका बोलूं कंडी से।
0: वर्णिका जी कंडी थों बल्लून देन। वर्णिका जी असु गद्दी मंच के रहने तो एक नहीं लेन देन ना, शायद गद्दी मंच
1: थोड़ी थोड़ी
0: थोड़ थोड़ी कर रहे ना, तो थोड़ थोड़ा थोड़ा एक नहीं ना। अच्छा वर्णिका जी, का स्कूल है? बढ़ देन तो है
1: गुरुकुल। हाँ
0: गुरुकुल धर्मशाला।
1: जी
0: गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मशाला है ना जी?
1: हाँ जी क्या
0: क्या बात है, क्या तुम क्लास टीचर रहा ना किया? हेलो
1: रीना
0: रीना, श्रीमती रीना जी तुसु पढ़न दे हिन। अच्छा कुंदिनी क्लास में पढ़ते हैं तो है
1: यूकेजी
0: यूकेजी में? क्या बात है। अच्छा तुसु अपना ये प्रोग्राम कदे लगदा?
1: अच्छा
0: अच्छा लगदा प्रोग्राम मंच कुंदिने गीत होना तो है चांदन?
1: बहुत रोज
0: अच्छा रोज ही हूं देन तो है, क्या
1: हम
0: बात है। कुन दिन गीत होना चंदन?
1: ओंदा ता जानता
0: होंदा तो
1: अच्छा
0: जानदा। हेलो
1: ओंदा जानदा
0: पूरा बल्ला कुन दिन होंदा तो जानदा। ठीक है जी, तो है पूरा शायद ना बोलो लेकिन है पूरा की सो समझ गए। तो बहरहाल शो तो एक गीत के सो तो है ज़रूर होने लगे, प्यारी प्यारी बच्ची है फरमाइश के करे सो ज़रूर होने लगे। लेकिन आइए जी भरमोर थो स्पेशल अक वीडियो की सो असु तक पहुँची है, और सब तो पहले असु कोशिश करने हैं कि इन दही वेड़ी गुंजन मई कविता की सो ब्रॉडकास्ट हो, और बड़ी नाजरी गल कि गदयाली अंदर की सो इन छोटे दे शख्स है कि सो गदयाली मंज कविता किया सो भेजिया, ये अपने आप में ही बहुत अच्छी गल। और सब तो ज़्यादा खुश होता कि अपनी इस विरासत जो अपनी इस परंपरा जो किया सो नेक्स्ट जनरेशन किया सो पकड़ो कर दे हा। वाकई में ही इन लग दिन की इनके प्रयास के सो कर नगर का सक्षम बुचू कर दे। तैया जी गरोड़े थो किया सो कि ना पिल्ली थो अकी बच्चे किया सो कविता भेजिया सो ऐ कविता की असो जरूर हूँ लेन शो तो।
1: नमस्कार, मेरा नाम दक्ष हुआ ता पिल्ली ग्राम हुआ ता आ तुसी आक कविता सुनाना चाहंदा ता तहरना गद्दी पर्सन कि मते शहर घूमे पर गमो न कोई और सबनी थों बांका इंदा भरमोर इतिहास सारे पन्ने पर सेना ना तड़ी आज भी पुराने घर रिछा सबनी थों छैल इंदा कुगती रगरा ड्रोने फाट ते बड़े नड़ गोड़ सबनी थों खराब बन्नी वाली रोड मुंह अरे मिठे है तेरी गल्ला बड़ी पोली सबनी तो छैल लो कोली वाली री बोली हद्दे गद्दी ते हद्दे कपूर यार चर्चे बड़े दूरो दूर एड़ी हर कमरा मजा भरपूर उलांसा विषय होता है बड़ा मशहूर एड़ी न पुज कोई गंदी बीमारी शिव शक्ति रे डेरा मन छितराड़ी मंदरा थल्ले पानी री पास आमरा सेरी मेरे नागर था अद्धे गद्दी ते अद्धे कपूर भरमोर चर्चे बड़े दूर दूर धन्यवाद
0: अच्छा तो होना तो है कि इन दे जो नेक्स्ट जनरेशन है सो जनरेशन की किस प्रकार हो गई, और अपने आप जो किया सो इतना अपग्रेड करो कर दिया कि कविता भी किया सो अपनी गदियाली माँ होना कर दिया। एक खासियत है इस कार्यक्रम रे शो तो, एक खासियत आ इन दे अपने गद्दी मनो रे जी बिल्कुल। और इस प्रकार हो के जहने तो है जनरेशन जो हृदय इस प्रकार प्रयास मांझ अपने आप जो भी किया सो वाकई में खुशी बनते हैं ना कि इस प्रकार का प्रयास किया सो इंदी जनरेशन किया सो करू करते हैं। बहरहाल तो सब श्रोता असोगे जरूर कनेक्ट पूछ सकते हैं ना 7018879 पर नंबर एक मौके फिर हूँ शेयर करूँ हाँ 7018879।

0: 7.09 per in the glass. So that's who we connected in Pusdan Kunbalund. Namaste ji.
1: Hello.
0: Hello.
1: Namaste bhai ji.
0: Namaste ji. Namaste.
1: ठीक है तो है
0: बहुत बढ़िया जी तो है भला तो ठीक ठाक ना
1: हाँ भी ठीक है
0: अच्छा जी कौन बल्लूंदन और कड़ी थों बल्लूंदन
1: आऊं खन्या रहा तू बल्लूंदी आ नीदू
0: नीदू अच्छा होनी को सूजी नए नए रिबैन बल्लूंदी आ नीदू तू है अपना नाम दसो
1: नीदी है मेरा नाम
0: अच्छा नीदी आ निधि जी कस क्लास समझ पढ़ते हैं तो है
1: और सेवेंथ मंच छोड़ दिया
0: क्या बात है अच्छा निधि जी ये दसा कि सभीों अच्छा सब्जेक्ट कौन देना लगता तुसु
1: मुझे इंग्लिश लगता
0: क्या बात है इतने थोड़े करी दी पाबंदी नहीं था अंग्रेजी अंदर हम थोड़े मत अंग्रेजी की सो बल्ले लिंदा चलिए अच्छा ये दसा कि क्या बनना चाहते हैं क्या फ्यूचर तय करो अली करना कि आफ्टर टेंथ
1: अली सोच रहा नहीं है
0: सोच रहा नहीं है अच्छा प्रोग्राम कहना तो हूँ दिन तो है कितना टाइम बची गया
1: हाँ अपनी दादी हो गई हूँ दी बड़ा टाइम बची गया
0: अच्छा क्या अच्छा लगता है निधि जी कार्यक्रम में तो सो
1: मुझे गाने बड़े अच्छे लगते हैं जल्दी गाने लाने
0: अच्छा गाने बड़े अच्छे लगते हैं
1: हाँ जी
0: कौन दिन गीत अच्छे लगते हैं
1: मुझे गद्दी गीत अच्छे लगते हैं
0: अच्छा सिर्फ गीत ही अच्छे लगते निधि जी या फिर कुछ और भी कार्यक्रम में जो और भी चीज़ें हैं इनपुट कर दें सो भी अच्छी लगती
1: मतलब गद्दी डांस वगैरह
0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी
1: मैं जो गद्दी गाने अच्छे लगते हैं
0: हाँ जी और
1: और डांस करना गद्दी गाने में
0: अच्छा सो तो ठीक है तो अपनी पर्सनल चॉइस दस इतनी लेकिन इस कार्यक्रम जो तो है बल्लू के हुंडे काफ़ी टाइम के सो तुसु पुछगो था इस कार्यक्रम में जो जानकारी तुसु अपने गद्याली बोली में मोल दी सो ना अच्छी लगती ने या जी आप जो आका है कविता के या सो होना या जो गद्याली अंदर थी सो अच्छे ना लगते या सिर्फ गद्दी गीत ही अच्छे लगते न
1: तो भी अच्छी लगती ना
0: अच्छा चलिए ठीक है जी क्या फरमाइश आज तुंदी और तुंदी दादी री
1: मेरी दादी का गाना सुनना सु सजना मु तेरे ताए सजना हो
0: क्या बात है क्या बात है चला ठीक है जी जरूर तू सुए गीत होना ले है ना जी
1: हाँ जी धन्यवाद
0: धन्यवाद जी शो तो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्म शाला तो है ट्यून क्यूर और कार्यक्रम हिंदी अपने गप्पा हूँ कर दें फिलहाल इन द अगले शो था सो गए कनेक्टेड हैं नमस्ते जी
2: नमस्कार जी
0: नमस्कार जी नमस्कार
2: और ठीक ठाक है
0: बहुत बढ़िया जी कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन
2: ज्ञान चंद बोल रहा
0: ज्ञान चंद जी कड़ी बल्लू दिन
2: थात्री
0: थात्री थो और ठीक ने थात्री आले सब
2: बढ़िया ही बढ़िया
0: करे करे लुगुर इनके दया मौसम थात्री पे हो रही है दूर की
2: लगी रही थोड़ी थोड़ी बरखा देने भरी आज
0: अच्छा
2: हाँ जी हाँ जी
0: कुरला पे हुआ ना आज
2: आज जाऊंगी दोस्तों में ना होंगे
0: अबे ये जानकारी था अबे तू पता हर एक चीज की सो डिप्लोमेसी पूछो रे ना दो दो चीज ज्यादा चल रही हुंदी ने आज की है जानकारी दी तेरे कि आज बैठना अबे तो ये जानकारी दी थी कि तो तू बैठना
2: जी है पतरोडू सरगांद 17 तारीख आई था दत्ता को बैठना
0: था तो तुम बखा लींदा कोई चक्कर नहीं उठा ली थी आज जो भी खुरा था फोन करना उठा लेनो मतलब कड़ी बेकर उठी वो मैं भी दैड़ा भरी रो तो आईने बेचारा बेगले ने प्यार रूरो थोड़ा करे
2: थोड़ी थोड़ी थोड़ी बरखा लगी रही है
0: हाँ लगी रही अच्छा उपली साइड लगी रही है
2: हाँ जी हाँ जी
0: इंदी किनारी तूना करी मतलब इस बनीक पास से किया सो बेगले ने प्यार लग रहे ना
2: हाँ जी हाँ जी
0: अक बजे तक आई थिंक लग रही रहे तो बात शांत ही तो
2: हाँ जी हाँ हो तो ठीक है तो
0: जी ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਗੀਤ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੁੰਦੇ
2: ਹੁਣ ਆਈ ਗਿਆ ਮਨੀ ਮੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੀ ਮੇਸ ਲਗੇ ਤੇਰੇ ਮੇਲੇ ਹੋ ਸਮੂਗਾ ਇਹ ਆਸ ਹੋਈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ
0: ਅੱਛਾ
2: ਮਨੀ ਸੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਹੈ ਕਿ ਕਨੈਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾ
0: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ
2: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है जी, जरूर सुन ले। और सब राजी बाजी जी, घर परिवार
2: सब सब कुछ ठीक है। हाँ
0: चलिए, खुश तंदुरुस्त रहना चाहिए इंसान,
2: जी,
0: बाकी तो चल रही
2: हाँ
0: जिंदगी है ना।
2: जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है जी, जरूर सुन ले तू स्विगी।
2: ठीक है, धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद जी, तशोतों तो सब भी बनी रहे रेडी गुंजन धर्मशाला सोगे। और कार्यक्रम मंच श्रोतों है बड़े दिन थोड़ा करे और हगूँ, और फरमाइश शरा थोड़ा करे डेर ज़्यादा बुझगो तो इसकी मुगा लेंदे नहीं, यानी कि फरमाइश शरा दौर गया सो शुरू करी दिन दे हिन तुंदे रेडियो सेट में रेडी गुंजन धर्मशाला मंच।

শ্রোত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন কর রো আর কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপ্পা কেন সো চল রই হিন শ্রোত আইয়া কার্যক্রম যো থোড়া করো আর হগো বড়েন দেন তো সব শ্রোতা আগে এসো জুড়ি সকদে জনাব 7018817099 পর নম্বর আক মোকে ফিরি তু ও গেউ শেয়ার করনো হ্যাঁ 7018817099 পর तो सब श्रोता के सो कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत क्या सो होने सकते हैं श्रोताओं बिल्कुल और सोगी सोगी जानकारी के न सो भी तो है जरूर दे सकते हैं अगर तू सो लगता कि तुम क्षेत्र में कुछ इस प्रकार की जानकारी हा जो रेडियो में जो शेयर करने लायक हा साझा करने लायक हा तो सो जानकारी तो है जरूर वो भी शेयर कर सकते हैं साझा कर सकते हैं बहरहाल ए थोड़ा करी और हगूँ के सो बड़े गंदा इन शतों और प्रदेश में के सो हम तो सो दसना चाहता बरसाला हर कसी वास्ते के सो खरा ना बंदा शतों है ना बरसाला हर कसी वास्ते बिल्कुल भी ठीक ना बंदा प्रदेश में मानसून सीजन में 142 मन उरे किया सो जान चले गए शतों अभी तुम ये जानकारियाँ है जरूर पहुँचते हैं और ये जानकारी सोगी सोगी शतों है फेसबुक रे माध्यम तो भी लाइव इच करेंदे जो फेसबुक रेंदे श्रोतन जो आजकल लस वो फेसबुक में होनो करते हैं तीन तक बे जानकारी किया होनो भी करते और हेरो भी करते हैं है ना तीन तक बे जानकारी किया सो है ज़रूर पहुँचते हैं श्रोतों तू सब यो है ज़रूर दसना चाहते है मैं दसू कि बरसाला के आसो हर कसी वास्ते खरा ना बंदा श्रोतों बरसाला के आसो हर कसी वास्ते सोए सोचदन कि विम जिम बरखा लगे मजा चलिया बरखा बुझ गया चट्ठान पे गया चलिए ठीक है लेकिन हर कसी वास्ते बरसाला ठीक ना बंदा प्रदेश में हिमाचल प्रदेश से गल करूँ करता हिमाचल प्रदेश में क्या श्रोता हूँ सो मानसून सीजन तो 142 मणु रे किया सो मौत भोए हा जी बिल्कुल अली बरसाले चल रहा हो हल्ली तक बरसाला हल्ली तक अज 8 तरीक का बुन शतो ता 142 मणु रा आंकड़ा के सो अस तक पजो के 142 मणु के सो मरे गए हैं प्रदेश में इस मानसून री बरखा था राज्य रे राज्य जो कि सो बहुत नुकसान पुजो हा शतो राज्य आपातकालीन परिचालना केंद्र री ताज़ा रिपोर्ट रे अनुसार अगर हम गल करूँ शतो तो 30 जून तो 6 अगस्त तक माफ़ करा जा था ना लेकिन 6 अगस्त तक ये रिपोर्ट रे आंकड़ा असूल है 6 अगस्त तक प्रदेश में बरखा थो भूस्खलन थो बदल फटने थो और अन्य आपदा थो 142 मणु रे के सो जान चले गए हा शो तो 142 घर रखे न सो चिराग बुझ गया हिन शो तो जबकि 31 मणु हल्ले भी क्या है सो लापता हिन इस अवधि में प्रदेश माँ के सो तो सो 798.70 करोड़ रुपये रखे सो नुकसान भी बुआ हा और शो तो दसना चाहता 105 ट्रांसफार्म के ना सो ठापिन प्रदेश में 105 ट्रांसफार्म ठापिन शो तो जति में से लाहौल स्पीति में 77 कुल्लू में 22 शिमला में 5 और चंबा में के सो ट्रांसफार्म बंद पीऊरा हा शो तो 73 पेयजल योजना के ना सो वादे थे राज्य में पेयजल व्यवस्था पर भी असर किया सो पे उगड़ता हा शो तो 73 पेयजल योजना वादे थे जति में से सिरमौर री 55 हमीरपुर री 9 शिमला भी 6 और बिलासपुर री 3 योजना के ना सो शामिल हैं और कई क्षेत्र में बहाली कार्य किया सो जा रहे हा शो तो इस प्रकार होगी जानकारी रा सिलसिला के सो ये चलते रहना हा शो तो और जो कि पहाड़ी इलाका और पहाड़ी इलाके अंदर के सो है जाहिर दे गल कि ये सब कुछ बुना जरूर है और तुसु ये आंकड़ा होने करे कि सो हैरान बुझगाना कि गराड़ा के ना सो पूरे हिमाचल प्रदेश में जितनी भी गराड़ा थी जती हुए है हिंदी में गौशाला बनते हैं लगभग लगभग लगभग 950 गौशाला के अंशो क्षतिग्रस्त हुई हिन श्रोतों बरसाला जनाब सभी वास्ते आखते हैं कि सो नहीं सकता बहरहाल कार्यक्रम जो आगो बढ़ते हैं और अगली फरमाइश किया सो पूरी कर दें बने रहे थे सब आर जे सचिन कपूर सो के रेडियो गुंजन भी इसी गूंज सो के यानी कि सचिन कपूर री गूंज सो के

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम इस समय हिंदी अपनी गप्पा के नो चल रही था बहुत बहुत स्वागत आक मौके फिरी फिलहाल 8 मिनट अब चीज श्रोता हूँ अब तक गाने रहा टाइम बुझे गो ना समय रहा पता ना लगता श्रोता हूँ कि समय कहने ने किया सो चली और कहने ने किया सो चली गंदा चले जी दादी पोतरी री फरमाइश है ना सो जरूर पूरी कर देन जो कि अनेक दादी पोतरी के ना सो इस समय कार्यक्रम जो हुणु कर दी भूणी और बिल्कुल थोड़ी करी उम्मीद भी भूणी तीन जो फराटी लाने री था चलिए जी हूँ दिन सभी दादी पोतरी जो प्यारे दे गीत फरमाइश माँ तुंदे सभी री मा।

तो समय पूछगो तू सब भी तो अलविदा लेने रा कचु की वक्त पूछगो हो और गंदे गंदे अकलास्ट फरमाइश किया सो भी असु पूरी करनी है तो सचिन कपूर ले लेनो तो सो थो इजाजत तो फिर मिलते चाहिए था वट गुड इवनिंग धर्मशाला मंच और गंदे गंदे बनना चाहनो हंसते रहे मुस्कुराते रहे माँ बाप री सेवा कर दे रहे कदी कसी रे बुरा मत करा श्रोतों कदी कसी रे बारे में बुरा मत सोचा प्रकृति री भी सेवा किया सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आसो भी ज़रूर करा श्रोतों और हर कसी रे खरा किया सो ज़रूर करा अपनी औरतों अगर तुसो भगवान ने इस लाइक बनूरा तो ज़रूर सभी रे खरा करा श्रोतों इन शब्द था हम सचिन कपूर ले लेनो इजाज़त नमस्ते धर्मशाला।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले
6: आया, ले लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना रहे तूने।
5: थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर,
4: देना।
5: बहुत मस्त लगे आपको।
4: लेना
5: सर। सर सर सर,
4: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: चल हम
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखें।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
6: तुझे पूरा यकीन है?
7: चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
8: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
6: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
9: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
8: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
10: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
11: सही है यार।
10: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
11: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए दे देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओ, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे अपने घरों में, है ना। तो कार्यक्रम जैसे कि आप सभी जो हमारे रेगुलर श्रोता हैं वो बाखूबी जानते होंगे कि कार्यक्रम जो है श्रोताओं वो बिल्कुल 8 बजे तक लाइव चलेगा, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक बहुत सारी जानकारियां भी पहुंचाएंगे। साथ ही साथ जानकारियों के साथ साथ जो है वो आगे संगीत का पिटारा जो है वो भी खुलता जाता है श्रोताओं में। आप सभी चीज़ें बाखूबी जानते हैं जो हमारे रेगुलर श्रोता हैं। तो चलिए जी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मौसम की जानकारी। यूँ तो पूरा दिन मौसम जो है वो ठीक रहा, हल्की बारिश जो है वो धर्मशाला में श्रोताओं देखने को मिली है। और इस समय की बात करूँ मैं श्रोताओं, तो इस समय 19 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और नमी की 19 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान है धर्मशाला का। नमी की बात की जाए यानी कि अंग्रेजी का वो शब्द है ह्यूमिडिटी अंग्रेजी में कहा जाता है श्रोताओं, तो वो 78% के आसपास है। विजिबिलिटी 10 किलोमीटर तक जो है वो बिल्कुल है श्रोताओं। तो यह है मौसम की जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। यूं ही जानकारियों का पिटारा चलता रहेगा श्रोताओं। आइए लेके चलते हैं, आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, यूं ही आपके अपने रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं आज सचिन कपूर के साथ। और आइए श्रोतो हम कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को श्रोतो कार्यक्रम के अगले थोड़े से और स्टेप की ओर, पड़ाव की ओर। अगला स्टेप देखिए, कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं श्रोतो। और आज का युवा जो है वो कुछ एक युवा इस प्रकार की सोच जो है वो ज़रूर रखते हैं, अपने सपनों को पाने के लिए दिन रात जो है वो मेहनत करते हैं श्रोतो। लेकिन आज का युवा अगर हम दूसरा पन्ना खोले किताब का तो श्रोतो आज का युवा कुछ इस प्रकार का भी है, युवा और युवती दोनों ही कुछ इस प्रकार के भी हैं कि जो बिल्कुल नशे की चपेट में हैं और नशे को ही अपना फ्यूचर मान बैठे हैं, नशे को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं श्रोतों। हाल ही में ही एक युवती की वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, शिमला के रोडू की ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है श्रोतों। इस वीडियो में जो है वो ये बताया गया है श्रोतों कि युवती किस प्रकार से जो है वो चिट्टे का सेवन कर रही है श्रोतों, उसके साथ एक और कोई युवक है और एक छोटा बच्चा भी है। तो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए वाकई में ही गलत संदेश है। हमारा समाज जो है वो हम सभी यही चाहते हैं, होप्स हो कि डिसेंट हो, है ना, अच्छा हो, डैशिंग हो। हम सभी दिल से तो यही चाहते हैं कि हमारा सब समाज जो है वो सभ्य समाज बने, है ना। लेकिन फिर भी कुछ एक नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने के बाद जो है वो चीज़ें इस तरह से बिखर जाती हैं कि शायद हमें भी पता नहीं चलता है श्रोताओं। तो इस चीज़ का हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमें इन सूखे नशों से जो है कोसों दूर रहना है, कोसों दूर। तो बहरहाल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ गुड इवनिंग धर्मशाला में। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस गीत की ओर, बने रहिए, जुड़े रहिए आरजे सचिन कपूर के साथ, गूंज अपने बन की।

शो तो FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। तो बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमारे पास हैं, तो आइए कुछ एक जानकारियां जो हैं वो आप तक हम ज़रूर साझा करते हैं, श्रोताओं आप तक हम ज़रूर शेयर करते हैं। तो श्रोताओं पहली बात तो ये कि मॉनसून जो है वो सबके लिए एक समान नहीं रहता है ना। किसी को लगता है ना कि बरसात बहुत अच्छी लग रही है, बरसात बहुत प्यारी लग रही है ना, लेकिन ऐसा नहीं है श्रोताओं। मॉनसून जो है वो हर किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता। प्रदेश में मॉनसून सीज़न में 142 लोगों की जो है वो मौत हुई है श्रोताओं। बताना चाहता हूँ 105 ट्रांसफार्म जो है वो ठप पड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 105 ट्रांसफार्म जो हैं वो ठप पड़े हैं श्रोताओं, जिनमें से लाहौल स्पीति में 77, कुल्लू में 22, शिमला में 5 और चंबा में एक ट्रांसफार्म जो है वो शामिल है श्रोताओं। इसी की तरह मैं बताना चाहता हूँ 73 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं। राज्य में पेयजल व्यवस्था पर भी जो है वो असर पड़ा है श्रोताओं। 73 पेयजल योजनाएं बाधित हैं, जिनमें सिरमौर में 55, हमीरपुर में 9, शिमला में 6 और बिलासपुर में 3 योजनाएं शामिल है। कई क्षेत्रों में बहाली कार्य जो है वो जारी है। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। तो चलिए जी, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही चलता रहेगा श्रोताओं। लेकिन चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना आपके अपने रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। तो चलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं आप सभी बने हुए हैं इस समय एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं नाचीज सचिन कपूर हूं आप सभी का अपना रेडियो दोस्त रेडियो जोकी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और अन्य जानकारियों के साथ आपको हमारे जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता हमें रेडियो के माध्यम से सुनते हैं और फेसबुक के माध्यम से सुनते भी हैं और देखते भी हैं उन सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं और कुछ खास जानकारी उन तक पहुंचाता हूं श्रोताओं। जी बिल्कुल श्रोताओं, मौसम के बदलते मिजाज और अचानक होने वाली बारिश से किसान

स्टेशन और 347 ऑटोमेटिक रेन गोज स्थापित किए जाने हैं श्रोतों। और इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला जो है वो आप तक ज़रूर पहुंचता रहेगा। ये पिटारा जानकारियों का श्रोतों यूँ ही खुलता रहेगा आप सभी के रेडियो सेट पर। अन्य और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, धीरे धीरे सारी साझा आप तक करेंगे श्रोतों। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ और आप सभी श्रोताओं के साथ। तो आप सभी श्रोता जो है वो बिल्कुल जुड़े हैं हमारे साथ, यूं ही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। लेके चलते हैं आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर, क्योंकि देखिए ना श्रोताओं की दिल का रिश्ता हमारा और आपका भी तो है, तभी तो आप हमारा इंतज़ार करते हैं और हमारे इस कार्यक्रम को जो है वो इतना प्यार करते हैं। तो चलिए, हमारा और आपका भी दिल का रिश्ता है और दिल के रिश्ते जो हैं वो सच्चे मन से निभाने चाहिए श्रोताओं, उन्हीं में मज़ा है।

तो एफ एम 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव अपने अपने वीडियो सेट पर। और कहते हैं श्रोतों, ज़िंदगी जीना ना आसान नहीं होती, ज़िंदगी जीना आसान बनाने पड़ती है। कैसे बहुत सारे लोगों की बातें इग्नोर करके बहुत सारे रिश्ते को बेहतर बनाकर, रिश्तों में अपनापन लगाकर, तभी जो है वो ज़िंदगी बेहतर बनती है, अच्छी बनती है श्रोतों। वरना ज़िंदगी जो है वो बेहतर नहीं रहती श्रोतों। अगर हम ऐसे ही चलेंगे तो ज़िंदगी बेहतर नहीं लगने लगती। फ़िलहाल तो हम बेहतर अपनी ज़िंदगी को खुद ही बना सकते हैं श्रोतों, है ना। खुद की ज़िंदगी खुद ही बेहतर बनाने पड़ती है और खुद की ज़िंदगी में खुद ही संघर्ष जो है वो करना पड़ता है श्रोतों। हर किसी की लाइफ में अपने अपने लेवल की जो है वो दुख परेशानी होते हैं, अपने अपने लेवल की परेशानियां जो हैं वो रहती हैं श्रोताओं, है ना। तो चलिए अपनी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो है वो कुछ एक बेहतर काम भी करने पड़ेंगे, तभी लाइफ बेहतर बनेगी। बहरहाल कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं श्रोताओं। देश सेवा, जी बिल्कुल श्रोताओं, देश सेवा का जज्बा लेकर सेना में अग्निवीर बनने पहुंचे युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है श्रोतों। मिलिट्री पुलिस ने जो है, मिलिट्री इंटेलिजेंस और धर्मशाला पुलिस ने एक बेहद सफलतापूर्वक अभियान में दो ऐसे दलालों को गिरफ्तार किया है जो भर्ती रैली में आए भोले भाले युवाओं को पैसे के बल पर सेना में भर्ती करवाने का झूठा सांचा जो है, झूठा दलासा जो है वो दे रहे थे श्रोतों। सेना की पारदर्शी व्यवस्था में जो है श्रोतों, वो कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे थे अपने इरादों को सच्चा करने की, लेकिन इन शातिरों की गिरफ्तारी से एक बड़ा जो है वो फर्जीवाड़े को रोक दिया गया है श्रोतों। और एक बड़ा धोखा होने से युवाओं को जो है, युवा जो है वो बच गए हैं। खुफिया एजेंसी को पिछले कुछ समय से जो है वो गुप्त सूचना मिल रही थी कि धर्मशाला में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के आसपास कुछ एक ऐसे शख्स हैं, कुछ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उम्मीदवारों को अपने जाल में फंसा कर भर्ती के नाम पर उनसे पैसे ठग रहे हैं या पैसे उनसे लूटने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो इसी बीच में मिलिट्री पुलिस ने और धर्मशाला की पुलिस ने जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई करके बिल्कुल उसको, उनके मंसूबों को जो है वो चकनाचूर कर दिया, उनके इरादों को जो है वो बिल्कुल ध्वस्त कर दिया श्रोतों। तो ये कार्यक्रम बिल्कुल आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ लाइव अपने अपने रेडियो सेट पर। लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अब इस फेरी से गीत की ओर।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत पुनः आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोताओं का। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और बहुत सारे प्यारे प्यारे से गीत हमारे पास ज़रूर है, और उन गीतों के साथ आप सभी श्रोताओं को हम अवगत जो है वो ज़रूर करवाएंगे श्रोताओं। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आप सभी श्रोताओं को जो है वो रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि आजकल बरसात है, और बरसात में जो है वो हम पहाड़ी इलाकों में जब भी काम करते हैं या जब भी गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं मिट्टी और पत्थरें गिरना जो है वो आम बात हो जाती है। और श्रोताओं, इसी बीच में बताना चाहता हूँ, पहाड़ी से मिट्टी और पत्थर गिरने से जो है वो अन्य बहुत सारे लोगों की हिमाचल में भी मौत होती है श्रोताओं। जैसे कि अभी एक नेपाली मजदूर की मौत जो है वो हुई है मनाली में श्रोताओं, और वो किसी एक गांव में जो है वो काम के लिए जा रहा था, काम के सिलसिले में जा रहा था श्रोताओं, और दर्दनाक मौत जो है वो हुई है नेपाली व्यक्ति की श्रोताओं। नेपाल का वो निवासी था और उनका नाम बहादुर थापा था श्रोताओं। उनकी जो पहचान हुई है वो बहादुर थापा के रूप में हुई है, और वो पिछले कुछ समय से जो है वो मनाली क्षेत्र में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण जो है वो कर रहे थे श्रोताओं। तो कहीं ना कहीं अब चले, ये तो एक जानकारी है जो हमने आप तक पहुंचा दी, लेकिन ऐसे न जाने हिमाचल प्रदेश में कितने ही लोगों की इस प्रकार से जो है वो मृत्यु होती है श्रोताओं। इसलिए हम बार बार आपसे आग्रह आग्रह करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस मौसम में जो है वो नदी नाले की साइड ना जाएं, इस मौसम में जो है वो अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखें, उबला हुआ पानी जो है वो पिएं, इन सारी चीज़ों का खास ख्याल जो है वो ज़रूर रखें श्रोताओं। मेरा नाम सचिन कपूर है और मैं इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम को होस्ट कर रहा हूँ श्रोताओं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बिल्कुल श्रोताओं, और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे गीतों के साथ आप सभी श्रोताओं को रूबरू करवाते हैं। लेकिन चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा वेड़ी गुंजन की इसी गूंज के साथ।

तो ये है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, मैं हूँ इस समय बिल्कुल लाइव आपके वीडियो सेट पर। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। शुतुम, नूरपुर पुलिस ने जो है वो नशा विरोधी अभियान के तहत ज्वाली पुलिस ने रेलवे स्टेशन के समीप दो युवकों से 2.45 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार जो है वो श्रोताओं, जब सुबह के समय जो है वो पुलिस दौरे पे थी, उस समय रेलवे स्टेशन ज्वाली के समीप, ज्वाली के पास बनी टैंकी के समीप दो युवक जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो है वो उनसे चिट्टा बरामद हुआ। श्रोताओं, आरोपियों की पहचान अभी अंकुश चौधरी निवासी मेरा के रूप में हो रही है श्रोताओं। और कहीं ना कहीं देखिए आए दिन जो है वो आए दिन श्रोताओं रोजाना चिट्टे से रिलेटेड जो है वो युवक युवतियों को पकड़ा जा रहा है। आप खुद सोचिए श्रोताओं, आए दिन ये कारनामा जो है वो हो रहा है, जो कि हम किसी के लिए भी सही थोड़ी ना है। ये आप मैंने आप

एक बात पहले साझा की, एक जानकारी की, रोडू में एक व्यक्ति, एक युवक और एक युवती जो है वो साथ में एक छोटा बच्चा, वो चिट्ठी की चपेट में इस कदर आ चुके हैं कि वो जो छोटा बच्चा है वो किस तरह की पिक्चर वहाँ पर दर्शा रहा है वो तो नहीं समझ आया, लेकिन युवक और युवती जो है वो जिस प्रकार से चिट्ठे का सेवन कर रहे थे, ये वाकई में हिमाचल प्रदेश की ये जो तस्वीर है ये कहीं ना कहीं डराने वाली है। हिमाचल प्रदेश की ये जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, यहाँ से कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के जो युवा हैं, जो पेरेंट हैं, वो कहीं ना कहीं ज़रूर डर रहे होंगे। श्रोताओं, उनके मन में वो डर का संकेत जो है वो ज़रूर है। श्रोताओं, वो डर का भय जो है वो ज़रूर है। बहरहाल लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और श्रोतो शाम के 7 बज चुके हैं, अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। गृह मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा, इससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है।
2: सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप्स के साथ कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज JPSC और JSSC पर भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
3: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस में CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। यमन में हौसी विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुदैली ने कहा कि हौसी विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चलेहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ये लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना रहे तूने।
5: थैंक यू सर। ओ, जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर।
4: देना,
5: बहुत मस्त लगे आपको।
4: सर, ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: तो सर
4: ले
5: चल, हम
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात में अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
6: तुझे पूरा यकीन है?
7: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटी की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
8: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
6: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
9: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
8: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
10: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
11: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिलाता। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
10: तुम इतने पैसों को क्या करोगे?
12: अरे बाप रे,

तो अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे यानी सचिन कपूर के साथ। तो आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं सचिन कपूर हूँ, नाचीज सचिन कपूर। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है, और हर इंसान से जो है वो कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है। श्रोतों, गलती से सीखना जो है यही इस जग का दस्तूर है कि गलतियों से हमें जो है वो सीखना चाहिए, और हर रोज़ कोई ना कोई गलती जो है वो ज़रूर होती है इंसान से। श्रोतों, शायद हम दिन में हज़ारों ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना है, उन गलतियों से जो है वो सीख लेनी है, और ज़िंदगी में जो है वो थोड़ा और एक कदम और जो है वो आगे बढ़ना है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी को भी तो ज़िंदगी होने दिया करो। बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्लान करते हैं हम सभी, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती है, हम ऐसा करेंगे फ्यूचर में, या मैं ऐसा करूँगा, अपने काम को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है, वो उतना प्लान करना जो है वो ज़रूरी है, लेकिन जब हम हद से ज़्यादा प्लान कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जो है वो ज़रूर बन जाता है। और तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी को भी ज़िंदगी की तरह जो है वो रहने दीजिए, क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया है उसने सोच के भी तो रखा है कुछ ना कुछ हमारे बारे में, है ना। सब कुछ हम ही प्लान करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, और सब कुछ हमारे ही अकॉर्डिंग चलेगा ऐसा भी नहीं है। देखिए, जो ऊपर वाला है ना, जो भगवान है ना, वो प्लान करके बैठा है हर एक प्लान करके बैठे हैं वो हर एक चीज़ को, कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो किस शख्स के साथ किस वक्त किस टाइम जो है वो होनी है, ये उनके प्लान है। श्रोतों, ये समझना नामुमकिन है। फिलहाल तो हम ये समझ सकते हैं कि बारिश में तेज़ी से ये बढ़ता जो वायरल है, इसको कैसे हम समझें और ये कैसे हो रहा है। श्रोतों, तो बताना चाहते हैं, बारिश और धूप के बीच लगातार बदलते मौसम का असर जो है वो लोगों की सेहत पर पड़ने लगता है। श्रोतों, जैसे कि हम सभी बाखूबी जानते हैं, इसी वजह से इन दिनों जो है वो मौसमी बुखार के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। श्रोतों, ये संक्रमण अक्सर वायरस के कारण होता है, और इसमें बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है कि श्रोताओं की जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है उनमें संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। ऐसे में समय रहते सावधानी बरतना और बचाव के उपाय अपनाना बेहद ज़रूरी है। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं कि मौसमी बुखार होने के कारण और कैसे इससे हम बचे, कैसे बचा जा सके, क्या आसान तरीके हैं। श्रोताओं, देखिए, मौसमी बुखार क्यों होता है, सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ के अनुसार अगर बात की जाए श्रोताओं, तो मौसमी बुखार का सबसे बड़ा कारण जो है वो कहीं ना कहीं वायरस होता है। श्रोताओं, जो हमें एक दूसरे से फैलता है, जिससे हम सभी बीमार होते हैं वायरस की वजह से। श्रोताओं, मौसम में बदलाव के दौरान ये वायरस अधिक सक्रिय हो जाता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैल सकता है। श्रोताओं, और फैलता भी है। कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में इसका खतरा ज़्यादा रहता है। संक्रमण होने पर समय पर लक्षणों की पहचान और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। श्रोताओं, वायरस जो है श्रोताओं, वो फीवर के लक्षण फीवर तक भी जाता है, आप सभी को बता दूँ, है ना। और बुखार होने पर हमें जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनके पास भी जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाएं। श्रोताओं, है ना, वायरस फीवर या फ्लू होने पर शरीर में कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। श्रोताओं, यदि मौसम बदलने के साथ ये परेशानियां महसूस हों तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अधिक बुखार आना, ठंड लगना और कपकपाती ठंड लगना, शरीर में दर्दे होना और मांसपेशियों में अकड़न होना, सिरदर्द और गले में खराश होना, नाक बहना और बंद होना, कमजोरी और अधिक थकान महसूस होना, पसीना आना, भूख कम लगना, शरीर में पानी की कमी होना, श्रोतों,
ये सारी चीज़ें। बुखार होने पर क्या करें, श्रोताओं विशेषज्ञ का मानना है कि अधिकांश लोगों में वायरस फीवर कुछ दिनों में आराम, पर्याप्त पानी और सही देखभाल से ठीक हो जाता है। यदि बुखार या शरीर में दर्द ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह पर दवा ज़रूर लें श्रोताओं। और इसी दौरान जो है वो पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, नारियल पानी पिए, सूप या अन्य तरल पदार्थ पीना और भरपूर आराम करना शरीर को जल्द ठीक होने में मदद करता है श्रोताओं। और तेज़ बुखार लंबे समय तक बना रहे या सांस लेने में दिक्कत जैसी गंभीर समस्या तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। कुछ एक टिप्स हैं, क्योंकि अब आप सभी को पता है कि बारिश धूप ये सिलसिला जो है वो चल रहा है, तो सिलसिले के बीच में ये थोड़ी सी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है इस नाचीज़ ने। तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा। लेकिन चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर।

तो FM बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो जॉकी सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप सभी का, सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, है ना जी? देखिए, हम बता रहे थे कि किस प्रकार से जो है वो अपने आप को हमने बेहतरीन रखना है इन दिनों में, है ना जी? तो बहुत सारी ज़रूरी जानकारी जो है वो हमने आप तक साझा की है। देखिए, विटामिन सी और विटामिन सी की कमी, विटामिन डी की कमी भी रहती है, तो इस समय विटामिन सी को जो है वो पूरा करने के लिए सब्जियां ज़रूर खाएं, अपने आहार में शामिल ज़रूर करें श्रोतों, है ना? और साबुन से जो है वो नियमित रूप से हाथ धोएं और व्यक्तिगत स्वच्छता का जो है वो ध्यान ज़रूर रखें श्रोतों। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ज़रूरत पड़ने पर मास्क पहने, घर और कार्यस्थल को साफ सुथरा रखें तथा पर्याप्त हवा आने जाने की व्यवस्था जो है वो भी रखें श्रोतों। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव। देखिए, चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस वक्त गुड इवनिंग धर्मशाला चला हुआ है। श्रोताओं तो आइए, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में छोटे से अंतराल का, मिलते हैं अंतराल के बाद।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: मस्त मास्क पहना रहे तूने।
4: थैंक यू सर। ओ, जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
3: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
4: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
3: एक और एक
4: है ना सर,
3: देना।
4: बहुत मस्त लगे आपको।
3: भाई जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
4: समझ गया सर।
3: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
4: ये
3: भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
5: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
6: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात में अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
5: तुझे पूरा यकीन है?
6: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
7: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
5: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
8: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
7: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
9: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
10: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिला। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है, वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। तो बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
9: तुम इतने पैसों को क्या करोगे? अरे बाप रे,

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो श्रोतो वक्त हो गया है रेडियो गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रेडियो गुंजन धर्मशाला में। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयासरत। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से की भेंट। प्रदेश हित से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। भाजपा ने कांग्रेस पर पंचायत और जिला परिषद चुनावों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का लगाया आरोप। देशभक्ति व राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए भाजपा ने शिमला में निकाली तिरंगा यात्रा। और चंबा जिला में बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं ने जताया शोक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। नई दिल्ली में आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्नातक विद्यार्थियों द्वारा अगले 30 से 35 वर्षों में किए जाने वाले कार्य का देश के विकसित भारत के मार्ग पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा।
2: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लगातार नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने प्रदेश हित से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। राज्यपाल ने विशेष रूप से प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए केंद्र द्वारा दिए जा रहे सहयोग की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि समाज व प्रदेश के विकास में पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। सोलन जिला के सायरी में आज पेंशनरों के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का जीवन भर का अर्जित ज्ञान अनेक मुश्किल परिस्थितियों में सही रास्ता चुनने में सहायता करता है। शांडिल ने पेंशनरों की विभिन्न समस्याएं सुनकर इनके जल्द समाधान का भी आश्वासन दिया। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार बागवानों की आय के साधन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोलन व परवाणु में आज सेब मंडियों सहित HPMC संयंत्र के निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि मंडी मध्यस्थता योजना को और मजबूत बनाने के लिए बागवानी विभाग द्वारा एक ऐप तैयार की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश में इस बार करीब 2 करोड़ पेटी सेब उत्पादन होने का अनुमान है।
3: अभी तक हिमाचल में मंडियों में कोई 45 लाख बॉक्स सेब के आ गए हैं और इस बार पिछले साल से कुछ फसल कम होने की उम्मीद है। फिर भी जो है 2 करोड़ से ऊपर जो है पेटियां इस बार हिमाचल में उसका उत्पादन होगा सेब। जहां तक गुणवत्ता की बात है तो इसके तो हम जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो अपनी दवाइयों का है इसका सैंपलिंग करते हैं और अगर कोई फेल हो जाए तो उनके ऊपर एक्शन भी लेते हैं।
1: जगत सिंह नेगी ने कहा कि विभाग गुणवत्तापूर्ण दवाइयां बनाने वाले छोटे उद्योगों से संपर्क कर रहा है और इन उद्योगों की दवाइयों को कम दामों में बागवानों तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर पंचायत और जिला परिषद चुनावों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगाया है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि सरकार पहले तो हार के डर से पंचायत चुनाव टालती रही और अब जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव टाल रही है। उन्होंने कहा कि यदि दो दिन के भीतर शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक नहीं हुई तो पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।
2: ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई कुछ जिला में कि वो डेप्टी कमिश्नर नहीं वो डीसीसी के प्रेसिडेंट बन गए। कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बन गया डेप्टी कमिश्नर का ऑफिस। 25 में से 13 पार्षद हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री लोकतंत्र का जो संदेश को उसको कुचलने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको दफनाने के लिए जिस प्रकार से अपनी सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज से पहले हिमाचल के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। अगर दो दिन के अंदर डेट तय नहीं की डिप्टी कमिश्नर शिमला ने जिला परिषद के चुनाव, तो हम सोमवार को माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए जाएंगे।
1: इस बीच जयराम ठाकुर ने शिमला ग्रामीण के भाजपा समर्थित नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी संबोधित किया। उन्होंने सभी से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए एकजुटता से कार्य करने का आग्रह किया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति व राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए भाजपा ने आज शिमला में तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और सांसद सुरेश कश्यप सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगे के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव और मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया।
4: तिरंगे के प्रति हमारा सम्मान का भाव, इस बात को और मजबूत करने की आज की तारीख में जिस प्रकार से आवश्यकता है, पूरे देश भर में हमने पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर भी ये फैसला लिया है कि 15 अगस्त से पहले हम पूरे देश भर में हर जिला मुख्यालय विधानसभा के स्तर पर तिरंगा यात्रा करेंगे और उसके साथ हर घर तिरंगा, इस बात को भी सुनिश्चित कि हर घर में तिरंगा लगे, इसके लिए भी अभियान जो है वो हमारी पार्टी की ओर से हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदेश के मुताबिक हम करेंगे।
1: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से ही एक बेहतर और सशक्त समाज का निर्माण संभव है। राजकीय महाविद्यालय घुमारवी में आज संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ आत्म विकास पर भी ध्यान देने की जरूरत है। धर्माणी ने विद्यार्थियों से अच्छी पुस्तकें पढ़ने व सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने विद्यार्थियों से भारतीय रक्षा सेनाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं का अधिक से अधिक अध्ययन करने का आग्रह किया है। वे आज सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों को इन उपलब्धियों से परिचित होना आवश्यक है। उन्होंने स्कूल परिसर में डिजिटल लैब व टेबल टेनिस हॉल का उद्घाटन भी किया। चंबा जिला में चुराह विधानसभा क्षेत्र के बैरागढ़ में आज सुबह एक निजी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए। बस में कुल 18 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों से गहरी संवेदना जताते हुए घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भी दुर्घटना पर दुख जताया है। भाजपा नेता व पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं की कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के सपने दिखा रही है, लेकिन टांडा अस्पताल में मरीजों को आवश्यक मूलभूत दवाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। विक्रम ठाकुर ने कहा कि टांडा जैसे बड़े अस्पताल में बुनियादी दवाओं और आवश्यक सुविधाओं का संकट पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। प्रदेश के विभिन्न जवाहर नवोदय विद्यालयों में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। परीक्षा के लिए www.navodaya.gov.in वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयासरत। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से की भेंट। प्रदेश हित से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। भाजपा ने कांग्रेस पर पंचायत और जिला परिषद चुनावों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का लगाया आरोप। देशभक्ति व राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए भाजपा ने शिमला में निकाली तिरंगा यात्रा। और चंबा जिला में बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं ने जताया शोक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ सचिन कपूर आपके साथ। तो श्रोतो वक्त हो गया है अब आप सभी से अलविदा लेने का, आप सभी को टाटा बाय बाय बोलने का। कल है छुट्टी हमारी। मिलते हैं मंडे को और कुछ एक खास जानकारियों के साथ और शायद एक किसी नए शख्स के साथ। 4 से 5 का दयाली कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम में हम किसी एक खास शख्स के साथ आपको रूबरू ज़रूर करवाएंगे। फिलहाल मुझे यानी सचिन कपूर को दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेडियो गुंजन में आरजे सचिन कपूर को यूं ही सुनते रहिए और सुनाते रहिए। नमस्ते धर्मशाला।

0: मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है
1: भैया? अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा हैं?
2: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
3: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
2: जल है तो कल है।
4: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली।

0: योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: अब मस्त मास्क पहना रहे तूने।
3: थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
2: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
3: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
2: एक और एक
3: है ना सर।
2: देना
3: बहुत मस्त लगे आपके ऊपर सर।
2: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
3: समझ गया सर।
2: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
3: सलाम।
2: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
4: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
5: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात में अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
6: तुझे पूरा यकीन है?
5: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
7: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
4: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
8: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
7: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
9: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
10: सही है यार।
9: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
10: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, वो दिलाता। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और इसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है, वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। पर बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
9: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?
11: अरे बाप रे।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दो।
0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ये लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना रहे तुम्हें।
5: थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर,
4: देना।
5: बहुत मस्त लगे आपको।
6: सर सर सर,
4: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखें।
7: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
8: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
7: तुझे पूरा यकीन है?
8: चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
9: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
7: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
10: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
11: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
12: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
13: सही है यार।
12: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
13: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला,
12: हा?
13: वो दिलाता। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और इसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। और बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
12: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?
14: अरे बाप रे।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, जिसे आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
4: बेटा तुम याद रखना,
3: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
4: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
5: ये लो भैया पानी।
4: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
6: भैया अब जब बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
7: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
8: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी,
7: जल है तो कल है।
9: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहां जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहां हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहां हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अब मस्त मास्क पहना रहे तूने।
5: थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: निकाल एक
5: है ना सर।
4: देना
5: बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर।
6: सर सर सर
4: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: चल हम
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखें।
7: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
8: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
7: तुझे पूरा यकीन है?
8: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
9: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
7: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
10: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
9: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
11: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
12: सही है यार।
11: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
12: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिलाता। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए दे देता। और इसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। फिर बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
11: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?
13: अरे बाप रे।

है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

हर्ट्ज़ पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।